एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 हुए हैं। हाजिर हैं हम अपनी आज की इस सभा के कार्यक्रमों के साथ।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, तत्पश्चात विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत

0: टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा, शुरुआत हमेशा मन से होती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। कुछ ही पलों में 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का भाग 6, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक पंकज उधास पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे पिटारा में सुनिए बॉम्बे टॉकीज। गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रेकर की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन है रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11 बजे विविधा में सुनिए मजरू सुल्तानपुरी पर आधारित चित्र भारती, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे हम सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिए मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक शकुंतला, इस नाटक का दूसरा भाग। मूल लेखन है कालिदास का, रूपांतरण और प्रस्तुति राजेश रेड्डी की। 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे उजाले, उनकी यादों के निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का।

चौथा भाग प्रस्तुति जुबैर खान की 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। छह बजकर 35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम पर निर्धारित। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज में क्लेनरेट मास्टर इब्राहिम से बातचीत। 7 में सुनिए हास्य नाटिका क्रोध हास्य और शलाका, माफ कीजिएगा क्रोध हरण और शलाका। लेखन है चिरंजीत का, निर्देशक दीनानाथ। 8:15 पर आप सुनेंगे रात्रि चित्रलोक। 9 आपके लिए, 10 छाया गीत और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हट करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 191।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। करता पल पल तेरा वंदन, युग युग का प्यासा मेरा मन, कर ले तू स्वीकार मुरारी, तू ये मेरा प्रणाम। श्री अनूप जलोटा जी को हमारा प्रणाम। स्वागत है सर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं, और अनूप जी हमें आप बताएंगे कि भक्ति के कौन से रंग से हमारे श्रोताओं को रंग रहे हैं इस कड़ी में।
2: ये भजन तो ऐसा क्षेत्र है कि कुछ भी गाया जाए तो पहले तो अपनी खुद की चुनरिया रंग जाती है, और जब खुद रंग गए तो सामने वाला तो रंग ही जाएगा। इसलिए इसका आनंद जो है वो पहले स्वांतः सुखाय वाला होना चाहिए
1: जी,
2: कि भजन गाकर उस भक्ति में उस रस में अपने को पूरा तरह डुबो लिया जाए, और वही आनंद में आज तक लेता रहा हूँ
1: जी। अनूप जी, ये जो सुख की बात की, भक्ति रचनाओं से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन

0: एक सुख और है, वो है बचपन का सुख। बचपन के संसार में जब पहुंचते हैं तो एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। आपको हम आपके बचपन की ओर ले चल रहे हैं, जहां आपका बचपन है, करियर है। हमें बताइए अपने करियर के बारे में और बचपन की उन गलियों के बारे में जब आपने गाना शुरू किया।
1: लखनऊ में गुजरा है बचपन, और 7 साल की आयु थी जब मैं पिताजी से, जब मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और स्टेज पे गाना भी शुरू कर दिया था। सो 7 साल की आयु से मैं मंच पर गा रहा हूँ, और जैसा कि पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने सख्ती से सिखाया है
0: जी।
1: लेकिन स्टेज

0: से गवाते थे, तो हिम्मत बढ़ती थी। स्टेज पे डांटना वो सब नहीं होता था, स्टेज पे बड़े प्यार से। तो जो ऑडियंस फियर होता है, कहते हैं कि स्टेज पे कुछ लोग डरते हैं, वो चीज बचपन से ही निकल गई थी। तो अब ऑडियंस जितनी भी बैठी हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगाना जरूरी होता है कि जब हम स्टेज पे बैठे हैं तो उसको ठीक से गाएं। आकाशवाणी से, विविध भारती से, ऑल इंडिया रेडियो से हमारा संबंध बहुत पुराना है
1: जी।
0: मुझे याद है जब मैं 17 या 18 साल का हूंगा, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया भजन गीत गजल के लिए, और मेरी माँ वो भी थोड़ा गाने में शौक रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलिए आप भी ऑडिशन दीजिए। हम दोनों ने फॉर्म भरा और हम दोनों ऑडिशन देने गए। उन दिनों मेरा अच्छा खासा नाम लखनऊ के आसपास हो चुका था एज ए सिंगर, खूब बिजी आर्टिस्ट था मैं। तो मैं और मेरी माँ जब हम लोग ऑडिशन देने गए, तो उस ऑडिशन में मेरी माँ पास हो गई थी, मैं फेल हो गया था।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद मुझे कहने लगी, देखा बड़ी बड़ी बातें करते हो, देखो क्या हुआ। खैर उसके बाद कुछ 6 महीने बाद दोबारा चांस दिया जाता है ऑडिशन का, फिर मैंने इलाहाबाद से ऑडिशन दिया और वहां से मैं पास हो गया
1: जी।
0: उसके बाद हम बम्बई आ गए, जब मैं 20 साल की आयु थी बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे आकर मैं गजल भजन रिकॉर्ड करने ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि पहली बार रिकॉर्ड करने आए हो, यहाँ एक कोरल ग्रुप है जो कानू घोष जी चलाते हैं, तो उसमें देख लो अगर तुम्हें चांस मिल जाए। तो मैंने कानू घोष जी को गाना सुनाया
1: जी।
0: उन्होंने मेरी भर्ती कर ली और मैं ऑल इंडिया रेडियो कोरल ग्रुप का मेंबर बन गया। मैंने करीब 2.5-3 साल उसमें गाया। मेरी तनख्वाह थी 320 रुपए महीना
1: जी,
0: और हम उसमें गाते थे, रोज आते थे, रियाज करते थे, गाते थे, और महेंद्र कपूर साहब या उषा मंगेशकर जी ऐसे कलाकार आते थे, उनके पीछे हम कोरस गाते थे
1: जी।
0: तो वो मेरी ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत मजा उसका लिया है मैंने। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि मेरा जो संबंध है ऑल इंडिया रेडियो से, वो पिछले 45 साल से चल रहा है, और ये संबंध ऐसा हो गया है कि मैं जब भी किसी ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सेकंड होम में आया हूँ, इतना पुराना संबंध मेरा है।
1: और अब आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में भी शामिल है।
0: हाँ, वो तो मुझे कुछ ड्यूटी दी है सरकार ने, तो मैं प्रसार भारती का बोर्ड मेंबर हूँ, काम कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: आपने अभी जिक्र किया था कि माँ के साथ आकाशवाणी पर गए थे, आकाशवाणी केंद्र पर, और माँ ऑडिशन पास हुई थी, तो पिताजी से आपने गाने की तालीम ली, माँ से कौन सी तालीम ली जो आपके जीवन में काम आई?
0: शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी, और वो इतना अच्छा नृत्य करती थी कि आज भी बिरजू महाराज जी और सितारे देवी जी जब भी मिलते रहते थे तो हमारी मम्मी का जिक्र करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा कथक करती थी, उन्होंने छोड़ दिया। तो शादी के बाद हमारी मदर ने छोड़ दिया था कथक, लेकिन क्योंकि जो भी डांसर्स हैं उनके अंदर इतनी लय होती है, सुर होता है, जैसे बिरजू महाराज जी कितना अच्छा गाते हैं, तो लय और सुर जो दोनों मिला के है मुझ में जो आया है, वो पिताजी से स्वर आया है और माँ से लय आई है।
1: क्या बात।
0: तो वो दोनों चीज मिला के मैं काम कर रहा हूँ।
1: अब हम चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए आप कौन सा भजन श्रोताओं को सुनवाएंगे और उसकी चर्चा करिए।
0: जग में

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुने तो एक नया आनंद आएगा।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये जो रागों का खेल आप करते हैं वो बहुत ही अप्रतिम होता है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। वक्त हो रहा है इजाजत लेने का, तो हम अपने श्रोताओं से अनुमति लेने से पहले बता दें, ऐसी लागी लगन भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी छठी कड़ी।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की

0: विविध भारती पर आप सुन रही हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परदेसी फिल्म के इस गाने के साथ। मन्ना डे की आवाज में, अली सरदार जफारी की आवाज में, माफ कीजिएगा, अली सरदार जफारी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।
1: अरे जरा सुनो लगा कर ध्यान, यहाँ जन्मे लोक महान बल।

आप सुन रहे थे अली सरदार जाफरी का लिखा ये गाना परदेसी फिल्म से। अगला गाना सुनते हैं महात्मा कबीर फिल्म से, सी एच आत्मा की आवाज में सी पांडे के बोल और अनिल विश्वास का संगीत।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में एक मीठी सी छेड़खानी। प्यार की राहें फिल्म से सुनिए इस गाने को। कन्नू घोष ने लिखा है, प्रेम धवन का संगीत।

आखिर कौन है मधुबाला का चिच्चोर। आइए सुनते हैं तराना फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर और संध्या मुखर्जी की आवाज में, प्रेम धवन के बोल संगीत अनिल बिस्वास का।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वारिस फिल्म से। सुरैया की आवाज में ये एक मीठी सी लोरी को लिखा है कमर जलालाबादी ने और अनिल बिस्वास ने इसका संगीत दिया है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना हमारी याद आएगी फिल्म से, केदार शर्मा के बोल। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। सबसे पहले लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में आज का सुविचार। आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा, शालीनता बिना मोल मिलती है। शालीनता यानी विनम्रता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। जी हां, हम विनयी बने, हम विनम्र बने, मिलनसारिता रखें, संयम से काम लें, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो ये आज का सुविचार। और देखते हैं आज के इतिहास के पन्नों में आज की तारीख किस तरह दर्ज है। जी हां, आज ही के दिन 1749 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ और इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही के दिन बंगाल के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने के लिए बुनकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। 1975 में आज एक दिन जापान की जुनको तैबेई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा और दुनिया की पहली महिला बनी। 1987 में आज एक दिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और 2010 में आज ही के दिन भारत के मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वर्ष 2010 में भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप से परमाणु हमला करने में सक्षम

अग्नि टू मिसाइल का सफल परीक्षण किया और आज यानी 17 मई को मनाया जा रहा है विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो विश्व दूर संचार दिवस, दूर संचार के साधनों से अवश्य जुड़कर रहिए और सकारात्मक सोच रखिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए संचार के साधनों से, और रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए खान पान व्यवहार को रखिए संयमित। चलिए सुन लेते हैं एक नगमा, फिर आगे बढ़ते हैं।

चलिए ये गीत हमने सुना और इस गीत के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों पर। सदर अस्पताल सासाराम में हीट वेव से निपटने को अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करने का दिया गया निर्देश और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की तैयारियों की समीक्षा। आदर्श कृषि मॉडल बनेंगे जिले के 5 गांव। वैज्ञानिक खेती की मिलेगी ट्रेनिंग। किसानों को मौसम आधारित खेती के सिखाए जाएंगे गुर। कृषि में नई क्रांति की है तैयारी। और जिले के थानों में पदाधिकारियों के नाम और पद होंगे प्रदर्शित। सदर अस्पताल में स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूकता अभियान और आसपास के लोगों को भी डेंगू से बचाव को जागरूक करने की दी गई सलाह। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में डीएम रोहतास ने सुनी लोगों की समस्याएं और नौहट्टा में 6 शिक्षक हुए बर्खास्त। नियुक्ति से जुड़े मामले में शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज थे मामले। और कैमूर जिले में कल से शुरू होगा गणित ज्योति शिविर, तैयारी पूरी। और क्रिकेट के फाइनल मैच में नारायणपुर ने विक्रमगंज को हराया और दिनारा में आधे से भी कम किसानों का हुआ रजिस्ट्रेशन। कैमूर के 6 अंचलों में भूमि मापी को आए 3,700 अर्जी है लंबित। रोहतास जिले में 80 वर्षों से अधिक आयु के बुजुर्ग व असहायों को घर बैठे मिलेगा राशन। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की दिशा में चल रहा है कार्य। रोहतास और कैमूर में बट सावित्री पूजा की रही धूम। पूजा स्थलों पर पारंपरिक गीतों और मंत्रोच्चार से माहौल हुआ भक्तिमय। और रोहतास के प्रभारी मंत्री बने माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय गतिविधियां और अब सुन लेते हैं एक और नगमा।

तो अभी आपने यह गीत सुना और पंकज उधास के साथ अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया था। अजीज कासी के लिखे गीत की संगीत रचना की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, फिल्म थी दयावान। और अब श्रोताओं एक नजर डालते हैं चार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। इस समय हमारे पास हैं दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर। दैनिक हिंदुस्तान ने देश के

दयावान। और अब श्रोताओं एक नजर डालते हैं चार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। इस समय हमारे पास हैं दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर। दैनिक हिंदुस्तान ने देश के तीसरे शिक्षा संस्थान निफ्टेम खुलने की खबर को प्रमुखता से छापा है। दुनिया के सामने अभूतपूर्व चुनौती, बोले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट। दैनिक जागरण लिखता है कि अरब सागर व बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, बोले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कि पाकिस्तान तय करे कि भूगोल में रहना चाहता है या इतिहास में। सासाराम में नो एंट्री में घुसे बालू ट्रैक्टर चालक ने ट्रैफिक सिपाही को रौंदा। प्रभात खबर के हवाले से खबर है कि पटना सहित 20 जिलों में 2 दिनों तक पड़ेगी भीषण गर्मी। और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को जून महीने में मिल सकती है विधान परिषद की सदस्यता। वही दैनिक भास्कर लिखता है कि बायोलॉजी के पेपर लीक की मास्टरमाइंड मनीषा गुरुनाथ मंधार पुणे से हुई गिरफ्तार। बोले माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुजफ्फरपुर किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी और बिहार में औद्योगिक निवेश का शुरू हुआ है नया अध्याय। तो श्रोताओं ये थी चार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियां। एक और गीत सुन लेते हैं।

तो ये जा। तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही आज के नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलो मैं आप सुनेंगी समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं।

0: इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एजेंसी ने बंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नव भारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी

0: पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देशभक्ति संगीत।

तो अभी आपने मन्ना डे का गाया काबुली वाला फिल्म का यह गीत सुना, प्रेम धवन के शब्द थे, सुरों में ढाला था सलील चौधरी ने, और इसी के साथ ही देशभक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, हमेशा की तरह आज भी आपके ढेर सारे पत्र हमारे सामने हैं, और चलिए हम शुरू करते हैं गीतों का, आपकी फरमाइशों का सिलसिला। और सबसे पहले हमारे हाथ में जो पत्र है वो मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे गीत और लक्ष्मीकांत परियाल के संगीत को सुनने का है। फिल्म है नगीना, और इस गीत को सुनने के लिए हमें आपने पत्र लिखा है। जी हां, आप हैं ग्राम नौहौना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और इसी गीत के लिए हमें पत्र इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्ल्यू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां और राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी और आपकी सहेलियां, और जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना और विपुल कांबड़े ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का नगमा फिल्म नगीना से।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: इस अंतराल के बाद चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म का एक नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं ब्रह्मपुरा मणिगाछी से भाई अक्षयलाल राय, पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। और आप हैं इस गीत की फरमाइश करने वाले तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान अल्लाह, फरहान अल्लाह, अजीज भाई और अब्दुल बाबा अनजाना, और साथ ही साथ

लछनपुर छत्तीसगढ़ से भी हमें एक पत्र मिला है। श्रोतागण है विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा। एक पत्र और इस गीत के लिए मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आप हैं भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए हम आपको सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का शोर फिल्म का ये नगमा, इन शब्दों के साथ की रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। लीजिए सुनिए।

जी हाँ, पानी का रंग होता ही ऐसा है कि जिसके साथ भी मिल जाए वो दूसरे का रंग ले लेता है। कहते हैं कि दोस्ती दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। दूध जब पानी के साथ मिलता है तो वो अपना रंग पानी को दे देता है, और दोस्ती निभाता है पानी कैसे कि जब दूध में उबाल आता है तो पानी भी उसके साथ साथ बर्तन से बाहर चला आता है, साथ निभाता है। तो चलिए, ये कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उषा उत्थोप और बप्पी लहरी के युगल स्वरों में। फारूक कैसर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने, और फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। इस गीत को सुनना चाहते हैं थाना रोड गढ़नुखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, नजबुन निशा, सदाम मंसूरी, सैफ अली, नगमा निशा, शबाना और लाल बाबू और शाहबाज। और इसी गीत के लिए हमें पत्र आपके भी मिल रहे हैं श्रोताओं। आप हैं ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, और गोकुल चौक गंगाजला सहरसा से इस गीत को सुनना चाहते हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। चलिए, डिस्को डांसर फिल्म का गीत रहा आपके रेडियो सेट पर।

और यह है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश खिलौना फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। आप हैं फुटानी चौक नरन स्टेट से भाई फटपटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या, बीके मिश्रा और लल्लू पंडित जी, और साथ ही साथ गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और एक पत्र और इस गीत के लिए है, आप हैं डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राजिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का यह गीत।

0: तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कहां चलती है, इधर तो आओ।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
8: शुभ वाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन।

और मौसम विभाग ने कहा अगले दो दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर

0: के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन तीनों भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नालंदा के राजगीर में आज से 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि आज ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अध्यात्म, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला के लिए राजगीर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए आवासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर के गर्म जल के कुंडों, विशेषकर ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मान्यता है कि मास के दौरान यहां स्नान करने से पापों का क्षय होता है, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 3 वर्ष पर आयोजित होने वाला यह पौराणिक मेला सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 500 CCTV और AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कृषि अवसंरचना कोष के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की दर से ब्याज में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर के पोलो मैदान में अत्याधुनिक फुटबॉल टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिले में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवनों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है बल्कि आमजन के बीच भी सकारात्मक संदेश देता है। पटना उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वैकेशनल बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल से 4 जून तक कार्य दिवसों में वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कल से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुलभ और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। इधर परिवहन विभाग अब दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार को पटना जिला और संतोष कुमार मल्ल को भोजपुर जिले का प्रभारी सचिव

0: बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया जिले के लिए रॉबर्ट एल चोंगथू, सारण के लिए पंकज कुमार और मधुमनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें गया जी में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंप खाली होने का दावा किया गया है। HPCL ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो भ्रामक, निराधार और वास्तविकता से परे है। कंपनी ने कहा है कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत है और पेट्रोल पंपों पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। HPCL ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित गुमराह करने वाली ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। कंपनी ने लोगों से आधिकारिक सूचना माध्यमों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में कल से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद सहित कई जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर इस दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर और एक चारपहिया वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के गयासपुर के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग सीवान जिले से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में

0: नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित थी। लखीसराय जिला प्रशासन ने बाईपास स्थित रेल ओवर ब्रिज के स्पैन में आए दरार को देखते हुए लखीसराय बाईपास पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आरओबी की निर्माण एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल समेत एक चार पहिया वाहन जब्त किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज पलासी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापामारी अभियान के तहत आधा दर्जन गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मामले में 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन और अन्य मद में दी गई राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के कोयलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इधर कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा देश का तीसरा निफ्टेन हाजीपुर में खुलेगा। अखबार लिखता है 100 एकड़ जमीन सरकार ने दी, केंद्र से मिली मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के घर ईओयू का छापा, लाखों की नकदी और सोना चांदी भी बरामद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है तय समय 2027 तक जमीन सर्वे पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति, बंटवारा नहीं तो जिनके नाम जमीन है उन्हीं का नाम होगा सर्वे में। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एनटीए ने जिस बॉटनी टीचर को बनाया था एक्सपर्ट उसी ने लीक किए प्रश्न। आज अखबार का शीर्षक है बिहार के 4 स्मार्ट शहरों में यातायात पुलिस की बड़ी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नजर आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर।

9:30 पर विविध भारती मुंबई के प्रसारण आप सुनेंगे और 10 बजे सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार।

श्रोताओं, आज रविवार है और आज के दिन 10:05 पर हमारे नन्हे श्रोता अपना साप्ताहिक प्रसारण सुनते हैं अंकुर। 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार आप सुनते हैं 10:45 पर और इलाकाई खबरें आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर 2:05 पर 2 बजे सुनिएगा पटना से प्रादेशिक समाचार। हमारे सांध्यकालीन प्रसारण में विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर और संध्या 6 बजे गांव घर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप कारण लक्षण एवं निदान के संबंध में एक बातचीत सुनिएगा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ मिश्रा जी से बातचीत करेंगे

हमारे रेडियो प्रतिनिधि अमित कुमार। सात बजकर पचास मिनट पर आप ई मन पसंद कार्यक्रम सुनते हैं। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये थे मोहम्मद अजीज और आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म थी निगाहें। आइए श्रोताओं सुनते हैं असद भोपाली का लिखा और राम लक्ष्मण का स्वरबद्ध किया, लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया पुलिस पब्लिक फिल्म का यह नगमा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आपके दिल में रहते हैं, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हम आपको सुना रहे हैं। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में, शब्द रचना है समीर की, धुन तैयार की है अनु मलिक ने

अरिजीत सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती के मुंबई केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना, जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम,
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी, मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर

शुरू हुआ। पंकज उधास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उधास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट, होटलों में

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उदास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उदास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मिट्टी दी महक और लीजिए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और डेली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात

0: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:05 हुए हैं। अब हमारे नन्हे श्रोता अपना साप्ताहिक प्रसारण सुनेंगे अंकुर।

0: सामूहिक कार्यक्रम अंकुर के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का नमस्कार।
0: बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंकुर कार्यक्रम में होती हैं बहुत सारी बातें। इसी क्रम में आज हम वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे पर करेंगे बातें। वर्ल्ड बायो यानी विश्व

0: या असमानता। बच्चों, हमारे आसपास या पूरे विश्व में जीवन के विभिन्न रूपों की जो विभिन्नता है, उससे ही हम जैव विविधता कह सकते हैं। जैव विविधता जीवन और विविधता से मिलकर बना है, जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को बताता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट प्रजातियों के रूप में है। इसे एक प्राकृतिक संसाधन भी आप कह सकते हैं, जिससे हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता बनी रहेगी तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। विश्व में जैव विविधता बनी रहे और उसका संरक्षण हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में सभी लोगों को जैव विविधता के प्रति सतर्क किया जाए, जिससे जैव विविधता बनी रहे और उसका संरक्षण हो सके।
1: सच में दीदी, जैव विविधता नहीं रहेगी तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा।
0: बिल्कुल, जैव विविधता में कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। बच्चों, हमारा जीवन प्रकृति का अनोखा उपहार है, अतः पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियाँ, इन सभी प्रकृति की देन का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, विविधताओं से भरी अपनी धरती और उसकी सुरक्षा हम सभी का दायित्व होना चाहिए, तभी हम खुशहाल धरती में खुशहाल जीवन जी सकेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, आज आप कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताइए जिनका पहला अक्षर क से शुरू होता है।
1: कौआ, कोयल, कछुआ, कुत्ता।
0: और जिनका पहला अक्षर हो ब।
2: दीदी, बगुला, बैल, बाघ, बिच्छू, बिल्ली।
0: इतना तो मामूली तौर पर कोई भी टपाटप कह सकता है। अगर यह पूछा जाए कि हिंदी के हर अक्षर पर जिन जिन जानवरों का नाम पड़ता हो सब बताइए, तो हम

0: आप कितना बोल सकेंगे? बहुत हुआ तो 100 नाम, 200 नाम और गिना जाए। जीव जगत के जानकारों ने एक तरह के मिलते जुलते जीवों को एक श्रेणी में रखा है। इस उपाय के बाद हर जीव को अलग अलग जानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सिर्फ बटे हुए कई भागों को जान लेने से ही सारे जीवों के बारे में जानना आसान हो जाता है। असल में वैज्ञानिकों के बंटवारे में ऐसी श्रेणियां हैं तो कुल 14, पर 10 से ही अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। तो पहली कोटि की बात की जाए, पहली कोटि के जीव हैं प्रोटोजोआ। एक सेल वाले जीव हैं ये। उसी एक सेल से जीवन की जरूरतों के सारे काम वे कर लेते हैं। खाना खाने को हजम करना, सांस लेना और छोड़ना, वंश बढ़ाना, सब इस तरह से। सबसे निचले दर्जे के जो जीव हैं, उनको नाम दिया गया है प्रोटोजोआ। ये बहुत तरह के होते हैं। अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। एक खास बात जान लेने की यह भी है कि प्रोटोजोआ में सभी जीव एक सेल वाले नहीं होते, कई सेल वाले भी होते हैं। इतना जरूर है कि इनके सभी सेलों में गहरा लगाव नहीं होता, अलग अलग एक दूसरे से बिखरे बिखरे होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप के बिना इन्हें देख सकना संभव नहीं। अब दूसरी किस्म के जीव, यह पोरीफेरा। पोर का अर्थ है गढ़ा। जिन जीवों के शरीर पर गड्ढे होते हैं वे पोरीफेरा कहलाते हैं। अनुमान लगाइए, ऐसा कोई गड्ढों वाला जीव?
1: स्पंज। दीदी, यह स्पंज भी कोई जिंदा जीव होता है क्या?
0: जिंदा जीव जरूर होता है। जिन स्पंजों को हम तरह तरह से काम में लाते हैं, उनमें बेशक प्राण नहीं होते, वे उसका मानो कंकाल हैं। कभी उनमें और भी कोई चीज रही थी और वह जिंदा थी। जब वह जिंदा थी तो उसका रंग था हरा। उसके शरीर में सेल एक से ज्यादा होते हैं, पर सारे सेल खूब घुले मिले होते हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनमें कुछ आपसी मेल जोल होता है, एक सहज लगाव होता है उनमें। तीसरी किस्म में आते हैं सिलेंट राज। नाम जरा उबड़ खाबड़ जरूर है, पर मतलब सीधा सादा है, सूजा हुआ पेट। इन सूजे पेट वालों का शरीर 2 सेलों के पर्दे का होता है। इन तक आते आते सेलों की बनावट कुछ उलझी सी हो गई है। ये सेल अपने समूह बनाना सीख गए हैं और एक एक समूह अलग अलग काम करते हैं। समुद्र के किनारे जेली मछलियां रहती हैं, मुलायम पुलपुला शरीर, ये भी इसी श्रेणी में आती हैं। प्रशांत महासागर में मूंगों के टापों की चर्चा हुआ करती है। मूंगे सूजे पेट वाले कीड़े होते हैं, उन्हीं के कंकालों से मूंगा का टापू बनता है। अब देखते हैं चौथे किस्म के जीवों के बारे में। यह है एकाइनोडर्म। यह भी अजीब टेढ़ा मेढ़ा नाम है, जी में आता है इसका नाम चक्री रखा जाए।
1: ऐसा क्यों दीदी?
0: ऐसा इसलिए कि देखने में उसका शरीर चक्के जैसा होता है, कुछ कुछ तारों जैसा भी। शरीर का जो असली अंग बीच में रहता है वह गोल होता है, ठीक उसी के पास से कुछ लंबी लंबी चीजें निकलती हैं, जैसे कि साइकिलों के पहियों की तीलियां होती हैं। तारा नाम की मछलियां इसी जाति की होती हैं। ये भी अनेक सेल वाले जीव हैं। इसके बाद आगे की 3 श्रेणियों में आते हैं कीड़े मकोड़े। शक्ल सूरत में ये तीनों अलग अलग होते हैं। 5वीं श्रेणी में आते हैं फीते जैसे चपटे कीड़े। ये सब तरह से दूसरों के आश्रय रहते हैं, दूसरे प्राणियों के बदन में डेरा डालते हैं और उन्हीं के खाने में हिस्सा बटाकर खुशी खुशी रहते हैं और उन्हीं के बदन पर अंडे देते हैं। 6वीं श्रेणी के कीड़े देखने में गोल मटोल होते हैं। 7वीं श्रेणी के कीड़े होते तो गोल ही हैं, पर वैसे नहीं, अंगूठी जैसी बहुत सी मुड़ी मालाओं के मिलने जैसा उनका शरीर बना होता है। केचुए, जोंक आदि इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये केचुए औरों के आश्रय नहीं जीते, बल्कि मनुष्य का बड़ा

0: पुकार करते हैं। हाँ, जो परजीवी होते हैं मनुष्य का खून चूसते हैं। आठवीं श्रेणी में आते हैं मोलास्क, ये भी खूब रंग बिरंगे होते हैं। इनके दर्शन समुद्र के किनारे ही मिल सकते हैं। हाँ, जब वे किनारे पर दिखते हैं तब वे जिंदा नहीं होते, उनका ऊपरी खोल ही पानी में तैरकर किनारे आ जाता है। ये है शंख, सीप आदि। कितने लोग जतन से बटोरकर इन्हें इकट्ठा किया करते हैं। परिवार भी इनका मामूली नहीं है, कोई 80,000 नाते रिश्तेदार हैं इनके। ज्यादातर उनका वास पानी में ही है, समुद्र में या झील तालाबों में। कई लोग सोचते हैं इन खोलों से ये घर का काम लेते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। ये खोल उनसे अलग नहीं होते, जुड़े होते हैं। तमाम जिंदगी ये उसी में सटे रहते हैं। सिर्फ चलते वक्त इन खोलों से अपने पैर और सिर को बाहर निकाल लेते हैं। आर्थ्रोपॉड्स है नवी श्रेणी। आर्थो के अर्थ है जोड़ा और पॉड के अर्थ है पैर। ऐसे पतिंगे जिनके पैर जुड़े होते हैं इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें हम खूब जानते पहचानते हैं, चींटी, तिलचट्टा, पतिंगा, तितली। कोई देखने में खूबसूरत तो कोई बदसूरत, किसी का शरीर सख्त तो किसी का कोमल। कोई काट खाता है तो कोई सुई चुभोता है। कोई उड़ता है तो कोई चलता है। कोई रात को उड़ता है तो कोई दिन को। इस तरह बच्चों, आज हमने प्राणियों या जीवों की कुछ श्रेणियों के बारे में जाना। लेते हैं कार्यक्रम में यहीं पर एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश। कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि नदियाँ कैसे प्रदूषित होती हैं। इसे समझने के लिए मैं आप सभी को एक बड़े से जंगल की अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी।
1: बड़ा जंगल दीदी, ये तो बहुत दिलचस्प कहानी होगी। मुझे जानवरों की कहानी बहुत पसंद है।
2: मुझे शेर की कहानी पसंद है।
3: मुझे बंदर की कहानी बहुत पसंद है।
0: यानी आप सभी को जानवरों की कहानी बहुत पसंद है। चलिए सुनाती हूँ आपको ऐसी ही एक कहानी। बच्चों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत से पशु रहते थे, शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, हिरन, खरगोश, मोर और भी बहुत से जानवर। एक बहादुर शेर उस जंगल का राजा था। उसका नाम था हीरा और उसका मंत्री था नटखट बंदर।
1: नटखट बंदर?
0: बंदर का नाम ही नटखट था, मगर नटखट बहुत समझदार था। नटखट ने एक दिन राजा को बताया कि जंगल के जानवर बहुत खुश नहीं हैं। जानवर प्रसन्न नहीं हैं, मगर क्यों नटखट? बंदर ने बताया कि महाराज, जब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से पशु उदास लग रहे थे। हमें कारण जानना चाहिए, इसीलिए मैंने कल सुबह आपके घर पर सभी पशुओं की एक सभा रखी है। ओह, बहुत अच्छा किया नटखट, मैं कल सुबह सभी जानवरों से मिलूंगा। अगली सुबह सभा में सभी जानवर आए। सभी ने जंगल के राजा को सुप्रभात कहा। राजा शेर ने भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम सभी बहुत उदास हो, इसका क्या कारण है? खरगोश, तुम मुझे बताओ। खरगोश झटपट उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आप सबसे अच्छे राजा हैं। हमारा जंगल भी बहुत हरा भरा और सुंदर है। आप सबका बहुत ख्याल भी रखते हैं। हमें यहाँ अच्छा भोजन भी मिलता है, मगर महाराज, जंगल से होकर बहने वाली नदी का पानी ठीक नहीं है। पानी पीकर हम में से कई बीमार हो गए हैं। हमारे परिवार के कई सदस्य पानी पीकर मर भी गए हैं। हम क्या करें महाराज, हम पानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते। अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसीलिए हम सब उदास हैं। ओह, यह मूर्ख नदी अपने बारे में क्या सोचती है? नटखट, जाकर उस नदी को समझाओ कि अगर वह मेरे जानवरों को अच्छा पानी नहीं देगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। नटखट ने राजा की आज्ञा मानते हुए कहा, जी महाराज, आप जो कहें मैं वही करूंगा।

मगर एक छोटा सा सुझाव है महाराज, वह नदी भी बहुत उदास दिख रही थी। मुझे लगता है कि हमें नदी से बात करनी चाहिए, क्यों ना हम में से कुछ लोग चलकर नदी से बात करें। अगले दिन सुबह खरगोश, हिरन, मोर और नटखट बंदर नदी के पास पहुँचे। सुप्रभात नदी, कैसी हो तुम, नटखट बंदर बोला। नदी भी सबको सुप्रभात कहते हुए बोली, वैसे तो मैं ठीक हूँ पर बहुत अच्छी नहीं हूँ। बंदर मंत्री बोला, क्यों, क्या हुआ नदी, तुम बहुत उदास दिख रही हो। मगर हम सभी जानवरों की भी एक समस्या है, हम सभी भी बहुत उदास हैं, क्योंकि पानी पी पी कर हम सभी बीमार हो रहे हैं, बहुत से जानवर मर गए हैं। इसीलिए हमारे राजा ने हम सभी को तुम्हें यह समझाने के लिए भेजा है कि तुम ऐसा मत करो और हम सबको स्वच्छ जल दो। मगर मंत्री जी, मैं तो स्वयं बहुत उदास हूँ, प्रतिदिन सैकड़ों मछलियाँ मेरे गंदे जल के कारण मर जाती है। जरा मेरी ओर तो देखो, मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है मगर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। मंत्री बंदर बोला, ओह तो यह बहुत बुरी बात है, मगर लोग तुम्हें गंदा कैसे करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। तुम मेरे साथ आओ नाव पर बैठकर, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। बड़ा अच्छा विचार है नदी, खरगोश, हिरन, मोर, तुम सभी मेरे साथ आओ। चलो नदी के साथ चले, और फिर नाव में बैठकर और साथ में नदी, सभी साथ साथ चलने लगे। चलते चलते खरगोश ने पूछा, नदी तुम कहाँ से आती हो। खरगोश भाई, मैं पर्वतों से आरंभ होती हूँ और पहाड़ों पर सुंदर जंगलों से गुजरती हूँ। वहाँ से बहुत सी जड़ी बूटियों वाले पौधे होते हैं, मैं उनसे अच्छी चीजें लेते हुए आगे बढ़ती हूँ, तब मैं बहुत सुंदर और साफ सुथरी होती हूँ। मेरे तट पर बहुत से पेड़ भी उगते हैं, वे मुझे देखकर खुशी से मेरा पानी पीते हैं। मंत्री बंदर बोला, ओह नदी, तुम भी तो वहाँ बहुत खुश होती होगी, ये पेड़ भी कितने किस्मत वाले हैं जो तुम्हारा पानी पीते हैं। नदी खुश होते हुए बोली, ठीक कहा आपने, मेरे पास बहुत सी मछलियाँ भी हैं जो मेरे जल में ही रहती हैं। वे बहुत खुश रहती हैं, वे गाती हैं, नाचती हैं और मेरे साथ बहुत तेज तैरती हैं। छोटी मछलियाँ भी कूदती हैं और कूद कूद कर संसार को देखती हैं। फिर धीमी गति से मैं गांवों और शहरों से गुजरती हूँ, वहाँ से मेरा जल गंदा होने लगता है, मेरा रंग बदल जाता है और मैं कुछ गंदी दिखने लगती हूँ। गंदे जल के कारण छोटी मछलियों का भी दम घुटने लगता है और वे मर जाती हैं। ओह नदी, ये तो बहुत दुख की बात है, नदी ने कहा। ठीक कहा, मगर मैं किसी के लिए नहीं रुकती, मैं आगे चलती रहती हूँ। मेरे किनारे के पेड़ भी अब बहुत खुश नहीं है। तब मोर ने सवाल किया कि उन पेड़ों का क्या हुआ नदी, वे मछली की तरह तो तुम में नहीं रहते मगर वे मेरा पानी तो पीते हैं। उनकी लंबी गहरी जड़ें मेरा पानी चूसती हैं, इससे उनके पत्ते गिरने लगते हैं। अपने चारों ओर इतने जीवों को मरते देख मेरा तो रोना ही बंद नहीं होता। फिर मैं जंगल में पहुंचती हूँ, जरा मेरी ओर तो देखो, मैं कितनी गंदी हूँ, मगर यह मेरी गलती नहीं है। मंत्री बंदर बोला, ओह नदी, अब मुझे पता चला कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हें गंदा करते हैं, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो, तुम उनसे लड़ भी तो नहीं सकती। नदी बोली, मैं लड़ सकती हूँ मंत्री जी, मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरा गंदा जल पीकर वे बीमार हो जाते हैं, मुझे और भी वे गंदा करते जाते हैं। फैक्ट्री और कारखानों का कूड़ा भी मुझ में फेंक देते हैं, वे मेरा ध्यान नहीं रखते, इस तरह मैं काली होती जाती हूँ। देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, अपनी यात्रा शुरू करते समय मैं कितनी साफ थी, अब मुझे देखो। मंत्री बंदर सहानुभूति पूर्वक बोला, नदी तुम रो मत, तुम्हारी समस्या सचमुच बहुत बड़ी है, मैं जाकर अपने महाराज को यह बात बताऊंगा और उनसे बात भी करूंगा। और फिर मंत्री बंदर ने सारी बात शेर राजा को बताई। इस पर जंगल के राजा ने कहा, ओहो अब सारी बात समझ में आई, वे लोग जो हमसे अधिक समझदार हैं, वे हमसे कम समझदारी का काम करते हैं, उन्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और बच्चों, इस तरह थोड़ी बहुत बातें करके सभी जानवर

0: अपने अपने घर को चले गए।
1: दीदी यह तो बहुत प्यारी कहानी थी। जो लोग नदियों को गंदा करते हैं उन्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। पशु पक्षी और वृक्ष भी हमसे अच्छे हैं।
2: दीदी मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों को नदी को साफ रखने के लिए समझाऊंगी।
3: दीदी मैं साफ सफाई के बारे में भी लोगों को बताऊंगी।
2: दीदी हम सभी बच्चे न्यूज़पेपर या टेलीविजन रेडियो के माध्यम से भी लोगों को बताएंगे।
0: यह तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों अब आइए लेते हैं जानकारी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। बच्चों मीठे मीठे शहद की बात हो या मिलजुल कर काम करने की बात हो, मधुमक्खियां ही यह काम कर सकती हैं। स्लोवेनिया विश्व का एक ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए कानूनी सुरक्षा की शुरुआत की है। वहां के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन जीविका का एक प्रमुख साधन है। स्लोवेनिया मधुमक्खियों के लिए हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप देश बन गया है। इसी देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। बच्चों दुनिया भर में मधुमक्खियों की 20,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में इनकी 5 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमें जो भोजन प्राप्त होता है उसका लगभग 1/3 मधुमक्खियों के कारण ही प्राप्त होता है। यानी विश्व

0: समय हो गया है कि हम बता दें अपने श्रोता बच्चों को कार्यक्रम का पता। तो बच्चों, कार्यक्रम संबंधी अपने विचारों को पत्र में लिखें और भेज दें हमें इस पते पर। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम अंकुर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

यह था हमारे नन्हे श्रोताओं का साप्ताहिक प्रसारण अंकुर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि हमारे सांध्यकालीन प्रसारण में आप 5:30 पर सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण, 6 बजे सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर। आज के इस कार्यक्रम में उच्च रक्तचाप कारण लक्षण और निदान की जानकारी देंगे डॉक्टर सत्येंद्रनाथ मिश्रा जी। सांझ गीत आप सुनेंगे 6:30 पर और गुड इवनिंग रोहतास 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुनते हैं 7:30 पर और 7:50 पर सुनिएगा ई मन पसंद।

रात्रि 9 बजे लोकधारा के अंतर्गत लोकगीत सुनिएगा और 9:15 पर सजेगी गजलों की महफिल। रस रंग के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग सुनिएगा रात्रि 10 बजे। 10:30 पर सुनिएगा चित्रपट तराने। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 10:30 हुए हैं। रस क्षमा करेंगे लोक माधुरी के तहत आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

अभी आपने मदन राय का गाया एक पारंपरिक गीत सुना, आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा को।

शारदा सिन्हा की गई इसी रचना के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 10:45 हुए हैं। रसधार के अंतर्गत लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

आयुष प्रकाश से अभी आप विरह गीत सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में अवधेश पाठक से एक निर्गुण इस छोटे से अंतराल के बाद।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: अवधेश पाठक के गए इसी निर्गुण के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियां कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती हैं
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है।
0: जी, और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओं 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल।
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा
1: जी,
0: जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुश्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का संगीत,
1: क्या बात है,
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्त।

0: मेरी
1: अमित
0: खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
1: जी,
0: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
1: जी हाँ।
0: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था,
1: जी,
0: हर
1: जी,
0: घर में
1: जी, जी,
0: वो
1: जी।
0: नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
1: जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत बहुत खूबसूरत बना लेता है, ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूर नहीं है, शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है, ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मजाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता गमे रोजगार होता, मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं। कि अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं, सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
0: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
1: जी।
0: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी,
1: जी
0: कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
1: जी हाँ।
0: तो अब आप ये बताइए कि मजरूह साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है कुछ और भी है आपके पास?
1: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है, एक इंटरव्यू है और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
4: मजरूह साहब पहले तो

0: आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से यानी जाने जाते थे, फिर बंबई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
1: साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
0: जी।
1: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो है किसानों की जिंदगी और सामाजिक हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म और रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब
0: शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
1: वो हम लोगों का
0: नतीजा है।
1: जी हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने ये तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी, उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका और वहाँ से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर। और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ और वहाँ मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी और कामयाब तबाबत की, लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाग जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है। चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा,
0: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
1: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार। चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेकर हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा आप मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुभ ही नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी।
0: अच्छा,
1: उसके चेयरमैन थे। तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से न कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
0: अच्छा,
1: तो मैं वहाँ तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक। सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहाँ से गुजरे और मैं उनके जेर साया, शेर तो पहले कहता ही था लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजे हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहाँ पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
0: दानिश्वर
1: बड़े बड़े आते थे, और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के शोरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उछारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
0: शऊर आया।
1: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मैयत नहीं थी, और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुस्बत हो, मनफी बात ना हो,
0: निगेटिव
1: नहीं हो, हाँ लो, इतना तो जरूर रहा,
0: पॉजिटिव एटीट्यूड।
1: अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहाँ एक दिन, तो कहने भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। 1944 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में, उस जमाने में यहाँ और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई, वो जैसे होता है ना एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना असद मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई मेरी आवाज बड़ी
0: नहीं
1: अच्छी।
0: सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं।
1: एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते

0: साल मैं अकेला रहा हूँ, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो।
1: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है।
2: बिल्कुल,
1: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहना है,
2: क्या बात।
1: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और
2: समारंगीन, समझ गए ना।
1: हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना,
2: हाँ।
1: हाल कैसा है जनाब का,
2: जी हाँ जी हाँ।
1: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
2: क्या
1: गाने
2: रेंज, क्या रेंज,
1: क्या रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब, अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ,
2: IAS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं, आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का, बड़े मियां दीवाने।
1: आप गाना सुनिए।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है, तो कभी किताबों से।

सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के हिंदी रूपांतर या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम फिल्मों करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल ओर आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलई पुथे का हिंदी

दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रिमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कूचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है।

0: विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कहीं।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है।
5: नौराई माची लाड़ा ची लाड़ा ची ग, आपड़ ही ना चंद्रा ची ग।
0: सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
5: तू कितनी

0: नब्बे के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवार मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।

ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: विशेष ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअ आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा। मैंने, दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा, आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

पहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग है।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत अमर जी। तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे।
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का
0: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक

0: राष्ट्रपतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत, पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: अनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर। इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर

अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच न होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं। दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं। सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आह तूने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों की लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो। वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नजर नहीं आते उनसे बातें होती हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, है ना? कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है। बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुर लहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं श्रोताओं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हवाओं पे लिखे हवाओं के नाम ये गीत जो हैं, जब छम से विविध भारती के जरिए आपके आंगन में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। श्रोताओं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को नमस्कार, और आज की भारत बदलते संचार माध्यमों में अपनों संग रिश्ते समेत रखने का जिक्र है। संचार बदलते आयामों ने दूरी को नजदीक कर दिया है। कभी जो काल्पनिक उड़ान भर मन में याद कर प्रियतम प्रियसी के नजदीक का आभास दिलाते थे, वो आज इंटरनेट युग में साक्षात रूबरू हो जाते हैं। ये वरदान भी है, मगर इन भौतिक सुविधाओं में वो विरह वेदना नहीं महसूस होती जो पहले होती थी। बहुत रोमांचक और प्रासंगिक इबारत है, संगीतमय सफर संग प्रश्न पहेलियों का इंतजार रहेगा। इनकी एक बात जो है श्रोताओं कि जो विरह वेदना है वो भौतिक सुविधाओं में नजर नहीं आती, तो ये लाइन जो इन्होंने लिखी है ये बड़ी गहरी है, इसके कई मायने हो सकते हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है कि जब हम दूरसंचार की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिनटों में लोगों से बातें हो जाती हैं, लेकिन शायद दिल की वो धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खोसी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी। बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियां अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटी कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है, ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने

पालकी में होके सवार चली और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसी लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो जरूर बताएं कि जब कोई नई चीज आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक जमाने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फोन किसको लगाया?

हो या फिर मुस्कुराहट की हो, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो सुनाई जाएगी। तो ये गीत जो था दिल की ऐसी ही बातों का मर्म हमें समझा रहा था। कैफी आजमी की ये रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी, फरार फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत के पहले दो दूनी चार फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोलों को सुर में ढाला था हेमंत कुमार ने, और इस गीत की जो डिटेल्स थी यानी पहले गीत की वो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीतों के बारे में प्यार की दास्तान तुम सुनो तो कहें, हमने सनम को खत लिखा, मेरे पिया गए रंगून और तमाम ये गीत इन्होंने बताए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि रेडियो के इन जादुई तरंगों का सफर सिर्फ शब्दों और सुरों तक सीमित नहीं बल्कि ये इंसानी जज्बातों का एक ऐसा बहता हुआ दरिया है जो सरहदों के सारे नक्शे मिटा देता है। जब हवा में तैरती हुई कोई धुन किसी उदास दिल को छूती है तो तन्हाई के अंधेरे पल भी उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठते हैं। ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती बल्कि दूर बैठे अपनों की धड़कनों और उनकी मुस्कुराहटों को हमारे बेहद करीब लाती हैं। इस बेतार की दुनिया में ना तो वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही दूरियों का कोई डर, यहाँ तो बस सुरों की एक ऐसी महफिल सजती है जहाँ हर कोई बंधा चला आता है। सच ही तो है टेक्नोलॉजी भले ही कितनी भी बदल जाए लेकिन रेडियो तरंगों की लय पर बहती यादों की ये अनमोल विरासत हमेशा हमारे दिलों को इसी तरह गुदगुदाती रहेगी। वैसे रेडियो पर किस गीत का आपको इंतजार रहता है श्रोताओं, कि ये गीत बजे तो आपको बहुत अच्छा लगे, और किसी खास मौके पर कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं। वैसे न सिर्फ रेडियो की ही बात है, अगर हम दूरसंचार की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो टेलीविजन है वो भी आ जाते हैं। कुछ एक नगमे हैं जिनमें से कुछ आज हमने लेने की कोशिश भी की है। तो टेलीविजन की क्या यादें हैं यानी टीवी दूरदर्शन की क्या यादें हैं, ये आप हमसे बता सकते हैं। वैसे अगर आप बताना चाहें तो ग्रामोफोन की बातें भी बता सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स आते थे उनकी बातें भी बता सकते हैं, सीडीज की जो बातें हैं वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हवाओं की तरंगों पर ही हमारे दिल के करीब आ जाती हैं। एक हमारे और श्रोता लिखती हैं, सुहाना सफर के कुछ शब्द और संभावित गाने, दूरी हवाओं पालकी परदेसियों, प्यार दास्तान देहरादून रंगून, गम उठाने ख्याल मन का नगर मतवाला, दूरी न रहे कोई, कुछ एक गीत इनके नहीं मिलते बाकी तो लगभग सभी मिल ही रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा गीत आ जाता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज प्रोमो पोस्ट बहुत देर से आई, सुबह 3 बजे नींद खुली, तब से अब तक 5-6 बार पोस्ट ढूंढता रहा, अभी 7:30 के लगभग कामयाब हुआ। तो ये सुनकर ये जानकर भाई आपकी नींद खराब तो जरूर हुई नींद आपकी, लेकिन विविध भारती से आपका जुड़ाव इस बात को दर्शाता है और आपने बड़े ही प्यार से ये बात हम तक लिख भेजी है। वैसे इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने सनम को खत लिखा, कभी बेख्याल होकर यूं ही छू लिया, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं, और इस गीत की क्या यादें हैं ये आप बताइए, किन पर फिल्माया गया है।

शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, न वो खत आता है न वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास

यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्म आया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूं कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डॉक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाके का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ, सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मजा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मजा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है, यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कच्ची बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है यानी कट्टी हो गई है, कोई आपकी सहेली कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं, कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं, बहते गीत दिलों

0: जोड़ देते हैं। रेडियो की सुरलहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामोफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेशवाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद आ रही है तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा के मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: देने वाले

सब कारणों से हम सबकी तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं, जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थी और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बनकर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे। तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते, तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेशियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थी। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

फारसी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों न हो दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेशी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं। कभी यादें बनकर कभी संदेश बनकर रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन यादें संवाद दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।

0: श्रोताओ, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।
1: पछताए हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं एक बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो, माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया। टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुंचे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी विनोद दुहन ने लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह ने सारण जिले के मस्तीचक में आज अखंड ज्योति आंख अस्पताल के निर्माण की नींव रखी है। इस अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अडानी ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अंधापन और दृष्टि दोष से मुक्त करने के लिए उनका समूह संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 149 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले में कल से 25 मई तक लगने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से निर्माण की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखा जा सकता है। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी

विज्ञापन देखे। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु तो योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधी सूचना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: आई वर्क फ्रॉम अ बिजनेस काउंसिल।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें

0: बहुत खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों,

0: उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र

0: छठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: पूर्णिमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

महेंद्र कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का यह गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी की बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और

और अभिजीत गवहाण का राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाण करके ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मंचा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वीबेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

ये है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला?
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
2: जी, अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।

0: निवास की इतनी रानियों के रहते
1: निवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
0: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुया देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
0: हाँ चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाएं।
3: अरे अरे मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
0: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
3: रुको ना, प्रेमवदा अनसुया चली गई।
1: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
0: जी।
1: कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
3: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
1: पाप?
3: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
1: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
3: अब जाने भी दीजिए मुझे।
1: क्यों जाने दूं तुम्हें?
3: पुरवंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
1: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
3: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
1: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
3: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
1: क्या उलझन है तुम्हारी? बताओ तो।
3: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो?
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
3: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ।

0: स्त्रियों से विदा ली। रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्य और गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्य, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
2: ठीक है।
0: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
0: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
0: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ, चलो माँ।

0: मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी मैं चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर भिड़े हुए कमल नाल के ये आभूषण,

0: आंखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
1: बचाइए बचाइए राजन बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर बुलाने लगे हैं। रघुवंशी पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
2: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया। किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया। पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा। वो तुझे भूल जाएगा।
1: हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। लगता है अपने बेसुतपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटाना। तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।

0: अनुसुया, ये अनुसुया, उठना।
1: क्या हुआ प्रियंवदा?
0: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
1: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
0: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
1: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
0: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
1: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
0: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
1: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
0: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
1: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
0: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
1: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
0: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
1: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
0: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
1: सच?
0: हाँ।
1: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
0: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
1: आशीर्वाद दे रहे थे?
0: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
1: हे भगवान।
0: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
1: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
0: आकाशवाणी से।
1: आकाशवाणी से?
0: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुँचे आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
1: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
0: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
1: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
0: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए।
0: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
1: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देख तो अनसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली, ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ, माँ,
3: प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।
2: अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिलूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को बोलना नहीं।

0: से मिलना होगा भैया। अनुसुईया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
1: बेटी तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक

0: दे मेरी जगह, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
1: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्राह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
1: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा, बाबा।
2: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
0: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
3: सखी
0: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
0: अनुसुईया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
2: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
0: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना,
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी।
0: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
0: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
1: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरंग्राह, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए, जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक के समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ, यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजारा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में असिस्टेंट था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट है, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटे भी जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम, मैं करूंगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है, राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं कुछ और डालते हैं, तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी जो उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आयशा से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है राज कपूर साहब के।

0: टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी है उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मुझे राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तो बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूंगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ।
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जा भाई दूसरे के पास जा, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, तो वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे, उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन। अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन जी रिलीज कर देगा।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप,
0: कुंवारा बाप मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज कहा ये जी, तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनीवे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया। बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे। बोला करूंगा, और उसने पिक्चर ले ली। उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था गड़बड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा,
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो है। हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे, शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरे एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर, एक पिक्चर दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेजे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के
1: राइटर, वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया। तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे,
0: हाँ।
1: एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छह महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक महीने बाद आऊंगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। सुन के घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को

0: लो स्क्रीन प्ले के लिए। तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं, ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा
1: बाबा
0: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
1: पुरानी दोस्ती है ही।
0: वो पापा बुलाता हूं मैं अभी भी, गुलजार पापा
1: जी,
0: सागर को सागर पापा बुलाता हूं। गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
1: बाबा
0: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है। उनका बेटा मैं वो अजीब सा लगेगा डायलॉग एंड वो नहीं करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख, स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूं। उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं, तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूं, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं।
1: हाँ, ये कौन है?
0: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे। अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन।
1: ओके,
0: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी, और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया, रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी, और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा कह रहा हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश भाई को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया, रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब सब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है, और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा मैं डबल रोल नहीं करना चाहता, और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूं। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुंच गया, सुबह उनके फ्लैट पे उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना सिर्फ मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी, रोल छोटा था 400 BC की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को,
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी,

0: स्टूडियो गेट से कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी। मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था, तब से मैं अच्छा, कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ।
0: सामने।
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर करो। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि डेटें तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ, राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटें, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूसडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: क्या
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहां पे जाते थे वहां पहले शिव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं

0: मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
1: जी,
0: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
1: जी।
0: मैंने कहा ये शर्त पे मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहां शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहां आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहां, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहां पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए आप 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं फैल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर, मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही। फिर आउटडोर वोट सीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने, जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूंगा तेरी पिक्चर,
1: बाबा
0: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था वो, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वो क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा। वहां पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहां बाहर थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठहरी करके आया ठंडी में, कांप रहा हूं, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोनियाक पी, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
1: अच्छा,
0: यश जी को मैंने सुनाया था, कोनियाक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनियाक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया सर उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
1: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज उजाले।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर।
1: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए

0: मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से कार्यक्रमों की एक झलक।

अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5:05 को आप सुनेंगे माफ कीजिएगा अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ भक्ति संगीत।

विज्ञान एवं पर्यावरण ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर और 6 बजे समय होगा ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम गांव घर का। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

गुड मॉर्निंग, माफ कीजिएगा, गुड इवनिंग रोहतास। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर और 7:25 पर। हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। 7:50 पर समय होगा आप सबों का पसंदीदा कार्यक्रम ई मन पसंद का।

और रात्रि 9 बजे समय होगा लोकधारा कार्यक्रम का और 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल, जिसमें आप सुनेंगे कुछ गजलें। 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम आज के फनकार का, जिसे हम अपने मुंबई केंद्र के से रिले करेंगे और ये कार्यक्रम विविध भारती के कार्यक्रम है। 10 बजे समय होगा कार्यक्रम रसरंग का, जिसमें आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने के अंतर्गत कुछ हिंदी फिल्म संगीत।

10:55 पर रात्रि में हम आपको सुनवाएंगे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 11:10 पर रात्रि में हमारा आज का प्रसारण का समापन होगा। ये था आज प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र से कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत भक्ति संगीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बंधन के अंतर्गत कुछ भक्ति संगीत। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। संकलन एवं वाचन है अर्चना कुमारी और प्रस्तुत करता है संतोष कुमार।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके?
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, मई माह का तीसरा रविवार है और आम तौर पर यह समय हमारे ओर कड़ाके की गर्मी का मौसम होता है। हालांकि कैलेंडर को फॉलो करते हुए ज्यादातर निजी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी यदि मौसम के उतार चढ़ाव को देखें तो ऐसा लगता है कि गर्मी की तपिश से जितना धरती को तपना चाहिए था उतनी तपिश अभी भी नहीं हो पाई है। गर्मी के इस मौसम में धधकती लू के थपेड़ों से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और धान की खेती के लिए मिट्टी काफी स्वस्थ बन चुकी होती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में यह उतार चढ़ाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रहा है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी खबरें तो कहीं कहीं तेज हवाओं ने पेड़ों को भी उखाड़ डाला है। अकस्मात पेड़ों के सड़कों पर गिर जाने से जान माल की क्षति की भी खबरें आई हैं। हालांकि मौसम पर तो हम इंसानों का जोर नहीं चलता, लेकिन खुद के बचाव के लिए एहतियाती कदम तो जरूर उठाए जा सकते हैं। तेज आंधियों के समय किसी टिकाऊ और मजबूत मकान में शरण ले, रिस्क न उठाए। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस, विश्व दूर संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इत्यादि, और इनसे

संबंधित खास बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस अंक के वैज्ञानिकों की। इस अंक के वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर और वर्टाल्ड रसेल। 17 मई 1749 को इंग्लैंड में जन्मे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है और उनके काम को किसी अन्य मानव के काम से ज्यादा जिंदगी बचाने वाला कहा जाता है। वह कोयल के बच्चों की परजीविता का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 2002 में एडवर्ड जेनर को बीबीसी की 100 महानतम ब्रिटन्स की सूची में शामिल किया गया था। एडवर्ड जेनर की पहचान एक चिकित्सक, प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी के रूप में रही है। वे टीकाकरण के क्षेत्र में चेचक के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। 26 जनवरी 1823 को जेनर ने अंतिम सांस ली। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक बर्टांड रसेल की। 18 मई 1872 को जन्मे बर्टांड रसेल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रिटिश दार्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री तथा लेखक रहे हैं। सन 1950 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने 40 ग्रंथों का प्रणयन किया था। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी, आउटलाइन ऑफ फिलोसफी और मैरिज एंड मोरालिटी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। 3 फरवरी 1970 को 98 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। तो श्रोताओं, यह थी इस अंक के वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा। और अब एक नजर विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर, जो पिछले हफ्ते समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहीं। श्रोताओं, मई 2026 की विज्ञान की ताजा खबरों में है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में। नासा का साइकी प्रोब मंगल के पास पहुंच रहा है और क्वांटम कंप्यूटर के लिए वैज्ञानिक लोग नए आणविक निर्माण खंड खोज रहे हैं। खबर है कि थाईलैंड में डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है जो एशियाई टाइटंस की विविधता को दर्शाती है। इसके अलावा एक संग्रहालय में कोआला की नई प्रजाति का जीवाश्म भी रखा गया है। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि दिसंबर 2026 तक एक शक्तिशाली अलनीनो घटना बनने वाली है। फलस्वरूप दुनिया भर में बाढ़, सूखा और रिकॉर्ड गर्मी के खतरे बढ़ सकते हैं। मानसून से संबंधित खबरें कहती हैं कि देश में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस साल के आकलन बताते हैं कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मानसून की समय से पहले दस्तक के लिए परिस्थितियां अनुकूल साबित हो सकती है। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस की, जो कल यानी 16 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानसून से पहले डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाना और बचाव के उपाय करना। इस वर्ष के इस दिवस का थीम है डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। यह दिन मच्छरों के प्रजनन को रोकने और शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है। हम सभी अपने स्तर पर भी डेंगू से बचाव के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कूलर, टंकियों, गमलों और पुराने टायरों में पानी न जमा होने दें, आसपास के वातावरण को साफ और सूखा रखें, मच्छरदानी, क्वायल या रिपेलेंट का उपयोग करें और शरीर को ढकने वाले कपड़े ही पहने। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, आंखों के

0: पीछे दर्द, जी मिचलाना और उल्टी शामिल है। गंभीर स्थिति में नाक, मुंह या मसूड़ों से रक्त स्राव तथा त्वचा पर लाल चकते भी दिखाई दे सकते हैं। डेंगू से बचने के हर संभव प्रयास किए जाए, रोकथाम बेहतर बचाव है। श्रोताओं, कल एक और भी महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया और वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक वार्षिक वैश्विक आयोजन है जो विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रकाश के अध्ययन और इसके अनुप्रयोगों के माध्यम से मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलावों को मान्यता देना। यह दिन वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया। श्रोताओं, विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन हमें दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की याद दिलाता है और दुनिया भर में सशक्त डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूरसंचार ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, चाहे वह इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट संचार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वे सभी तकनीकें आज के युग में हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। डिजिटल युग में संचार केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और वैश्विक सहयोग का आधार भी बन गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को यह संदेश बताना कि सूचना और संचार तकनीक, ICT और इंटरनेट हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी इंटरनेट और तकनीक की पहुंच नहीं है। यह दिन सरकारों और संगठनों को इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कनेक्टिविटी ने, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, विकासशील और कम विकसित देशों को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, आर्थिक उन्नति करना ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला सकें। साथ ही यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे कनेक्टिविटी ने, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, विकासशील और कम विकसित देशों को तकनीक के जरिए सशक्त बनाना, आर्थिक उन्नति करना ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला सकें। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के बारे में और भी स्पष्टता से जानने के लिए आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा शास्त्री वरद केसरी जी।
1: दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन का अर्थ है विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के माध्यम से लंबी दूरी पर सूचनाओं, संदेशों, छवियों या ध्वनि का आदान प्रदान करना। यह आधुनिक संचार का आधार है जिसमें फोटो, इंटरनेट, रेडियो, टीवी और उपग्रह जैसी तकनीकों का उपयोग करके दूर स्थित लोगों से बात करना या डेटा साझा करना शामिल है। आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से एक छोर पर मौजूद व्यक्ति दुनिया के दूसरे छोर से बात करने में सक्षम है। दूरसंचार के क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के ही नहीं बल्कि विश्व के भी लगभग सभी मुख्य नगर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। दूरसंचार से लोगों को देश की हर गतिविधि, सामाजिक, राजनीति,

आर्थिक एवं संस्कृत सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है। हर परिस्थिति में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जनसाधारण को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी दूरसंचार को ही वहन करनी पड़ती है। दूरसंचार के साधनों के माध्यम से ही जनता की समस्याओं एवं सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाता है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि दूरसंचार के ऐसे ही साधन है। टेलीफोन जैसा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक बार में कुछ ही व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है, किंतु दूरसंचार के कुछ साधन ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से एक साथ कई व्यक्तियों से संचार किया जा सकता है। जिन साधनों का प्रयोग कर एक बड़ी जनसंख्या तथा तक विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, उन्हें हम जनसंचार माध्यम भी कहते हैं। जनसंचार माध्यमों को कुल तीन वर्गों, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं नॉन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्फलेट, पोस्टर, जर्नल, पुस्तकें इत्यादि आती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्म आती है और इंटरनेट नॉन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। आइए इनके प्रमुख साधनों के बारे में जानते हैं। रेडियो आधुनिक काल में रेडियो दूरसंचार का एक प्रमुख साधन है, खासकर दूरदराज के उन क्षेत्रों में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिन क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत में सन 1923 में रेडियो के प्रसारण के प्रारंभिक प्रयास और 1927 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत के बाद से अब तक इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हासिल की जा चुकी है और इसका सर्वोत्तम उदाहरण FM रेडियो प्रसारण है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा रेडियो प्रसारण है जिसमें आवृत्ति को प्रसार ध्वनि के अनुसार मॉडल किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार सन 1925 में जेल बेड ने किया था। आजकल यह दूरसंचार का प्रमुख साधन बन चुका है। पहले इस पर प्रसारित धारावाहिकों में सिनेमा के कारण यह लोकप्रिय था। बाद में कई न्यूज चैनलों की स्थापना के साथ ही यह दूरसंचार का एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई। भारत में इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। वर्तमान में 300 से अधिक टेलीविजन चैनलों 24 घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित कर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इंटरनेट दूरसंचार का एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसका आविष्कार 1969 में हुआ था। इसके बाद से अब तक इसमें काफी विकास हो चुका है। इंटरनेट वह जिन्न है जो व्यक्ति के सभी आदेशों का पालन करने को तैयार होता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी का किताब का ऑर्डर देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा को नए अवसर दिए हैं। सरकार अपने प्रशासन कार्यों के संचालन, विभिन्न कर प्रणाली प्रबंधन एवं सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट व्यापार और वाणिज्य से प्रभावी नहीं था, लेकिन आज सभी तरह के विपणन और व्यापारिक लेन देन इसके माध्यम से संभव है। दूरसंचार का कार्य क्षेत्र प्राचीन काल में संदेशों के आदान प्रदान में बहुत समय लग जाया करता था, परंतु अब समय की दूरी घट गई। अब टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीग्राम, पेजर तथा फैक्स के द्वारा क्षण भर में संदेश और विचारों को आदान प्रदान किया जा सकता है। अब तक समाचार को टेलीप्रिंटर, रेडियो अथवा टेलीविजन द्वारा कुछ ही क्षणों में विश्व भर में प्रसारित किया जा सकता है। दूरसंचार के माध्यम से हर क्षेत्र सुगम हो चुका है। इसके द्वारा अपने विचारों को कुछ ही क्षणों में विश्व भर में कहीं प्रसारित कर सकते हैं। आज इसे वैज्ञानिक तकनीक ने और भी सुगम और आसान बना दिया है। दूरसंचार और मीडिया के माध्यमों के द्वारा ताजा तरीन खबरें और मौसम संबंधी जानकारियां हमें आसानी से प्राप्त हो रही है। वाणिज्य को समर्थन देने के लिए अनेक संचार सेवा उपलब्ध है। फाइबर ऑप्टिकल केबलों से जुड़े किसी भी प्रकार के नेटवर्क हार्डवेयर को उपयोग करके लंबी दूरी से कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल एक उपग्रह आधारित संचार सेवा जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऑनलाइन समाचार पत्रों एवं टेली शिक्षा सेवा जैसे अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक लचीली और निर्बाध और विश्वसनीय है। डिश नेटवर्क सेवा DTH डायरेक्ट टू होम एक उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है जो सेलुलर कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। उपग्रह से सीधे मीडिया सेवा प्राप्त करने के लिए एक सेटअप बॉक्स और छोटा डिश एंटीना आवश्यक है। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकता है, दूरसंचार के कारण दुनिया भर के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दूर दराज के स्थानों से जुड़ सकते हैं। इसमें आमतौर पर एक प्रेषक और एक या अधिक प्राप्तकर्ता होते हैं जो एक ऐसे तकनीक से जुड़े होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजती है, जैसे एक टेलीफोन सिस्टम

0: कंप्यूटर, लैन या वैन, इस प्रकार के हम कह सकते हैं। आज का समय दूर संचार का समय है, आप भी दूर संचार के माध्यम से जुड़कर रहिए और अपने वर्तमान को शानदार और भविष्य को सुरक्षित बनवाइए।
1: श्रोताओं, अब अंत में कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करते हैं। 1977 से शुरू हुआ यह दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यह दिवस सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति से संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण जरिया है। इस वर्ष के इस दिवस का थीम है, संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा आयोजित यह दिन सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक एकता में संग्रहालयों की भूमिका को रेखांकित करता है। संग्रहालयों का संरक्षण एवं उनके संपोषण से संबंधित विशेष जानकारी के लिए सुन लेते हैं यह खास बातचीत। अमृत झा जी,
2: जी
1: आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रोहतास के कनीय संरक्षण सहायक हैं। जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: अमृत झा जी, आपने रोहतास एवं कैमूर जिले में कौन से स्मारक या स्थल हैं जिन्हें चिन्हित कर संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है?
2: जी, सासाराम के अंदर तो बहुत पोटेंशियल साइट है, जैसे अपना शेर शाह सूरी का मकबरा, हसन शाह सूरी का मकबरा, अपना चंदन सहित के पहाड़ी के ऊपर अशोक का शिलालेख है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर माँ मुंडेश्वरी मंदिर टेम्पल है, उसके बाद आपको बख्तियार खां का मकबरा है। ये सारे जो है पोटेंशियल आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसका कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और जो भी काम होते रहता है उसको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के हिसाब से वो काम किया ही जाता रहता है। और बहुत बड़ा साइट अपने रोहतास के अंदर एक रोहतास फोर्ट है, नाम तो सब लोग जान ही रहे हैं
1: जी।
2: बहुत अच्छी साइट है और ये सारे साइट है जिसपे लोग डिपार्टमेंट मेनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंजर्वेशन का काम करते हैं। समय समय जहां जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का काम किया जाता है, उसको जो मूल उसका स्वरूप है मूल स्वरूप में उसको मेंटेन रखने के लिए।
1: झा जी, आमतौर पर पुरातन धरोहरों के संरक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं?
2: जी जी,
1: और उनका निराकरण कैसे किया जाता है?
2: जी, बहुत सारे साइट है जिसमें कि अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कुछ हम लोग का हमारे यहाँ अगर स्टोन स्ट्रक्चर है तो समय समय पे क्या होता है कि कुछ एरिया में स्टोन माइनिंग बंद हो जाता है। तो हम लोग का मेन मोटो होता है कि एक्चुअल जो मटेरियल है वही यूज होना चाहिए उस टाइम में। मान के चलिए एक एग्जांपल अपना शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी मकबरा उसके एक्चुअल जो भी उसमें स्टोन यूज हुआ है तो उसी स्टोन से हम लोगों को अगर कुछ छज्जा टूट जाती है, कोई पार्ट उसका डैमेज हो जाता है तो रिपेयरिंग करने के लिए हम लोगों को सेम स्टोन की जरूरत होती है। ये मैं एक साइट के लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे साइट में ऐसा आता है। मान चलिए हमारी पहाड़ी साइट में कुछ शिमला के अंदर हमारा साइट रहता है जहां पे क्या है कि आपको जो मटेरियल चाहिए होता है कोई ना कोई कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम या कुछ भी हो, खनन कभी बालू कभी बंद हो जाती है, कभी इसी तरह से बहुत सारा मटेरियल है जिसमें कुछ ना कुछ काम रुक जाता है, उसको फिर सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम आती है। बहुत जगह क्या है कि जैसे आप अपना साइट एक नालंदा है सब लोग जानते ही होंगे
1: जी, जी।
2: तो नालंदा क्या है वो उसमें स्पेशल साइज ब्रिक होती है, जो हम लोग मॉडर्न ब्रिक अभी यूज करते हैं उस तरह की ब्रिक नहीं लगी हुई, वो बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक होती है, 35 सेंटीमीटर लंबी, 25 to 26 सेंटीमीटर चौड़ी और उसकी थिकनेस भी 5 to 6 सेंटीमीटर होती है। तो उस तरह के मटेरियल को क्या होता है स्पेशल बनवाना होता है। तो इन चीजों में कभी कभी क्या होता है आपको 4 महीना 5 महीना 6 महीना ये डिले हो जाता है, तो ये सारा चीज प्रॉब्लम आते रहता है लेकिन उसको कुछ किसी न किसी तरीका से उसका सॉल्यूशन निकालते जाया जाता है।
1: जी
2: जी, जी।

श्रोताओं, दीपक एक ऐसा साधन है जिससे अंधकार दूर होता है और रोशनी फैलती है। अंधेरे में हम लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं। ज्ञान की रोशनी जले, अज्ञान अपने आप तिरोहित हो जाएगा।

श्रोता हूँ, हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड 821115। और अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुत करता संतोष कुमार।

8211115। और अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुत करता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

श्रोता भाई बहन, गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सबका के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, आज देखल तो कब कि बात बात में आदमी हमेशा फोन पर मोबाइल पर दिन भर लागल रहता, और जहां अगर जाए के बा 2 घंटा के रास्ता बा तो घरे ले 5 बार फोन आई कि कहाँ पहुँचल, कब पहुँचब, कहीं जाम तो नहीं है। माने पल पल के सूचना हर व्यक्ति तक पहुँच रहल बा। ये बहुत बेहतर भी बा, बढ़िया भी बा, और आज के क्रांतिकारी युग जोन बा सूचना क्रांति के, ओकरा खातिर जरूरी भी बा। और ये दिवस के मनावे खातिर आज के जोन दिन बा विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस, एकरा खातिर हमनी के जोन पूरा विश्व जोन बा दूर संचार के और सूचना क्रांति के जोन युग बा ओकरा के विशेष महत्व दे रहल बा। श्रोता भाई बहन, आज के कार्यक्रम में हमनी के दूर संचार और सूचना का आज के समय में महत्व विषय पर चर्चा कर जाए। आज विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस भी है। आज हमनी के लोकगीत भी सुनल जाई, बोल होई रंग द पियावा, और कलाकार होकर वंदना कुमारी। आज के समय में जितना आदमी तनाव में रहता, जितना जल्दबाजी में रहता, खान पान सही नहीं रहत, अनियमित दिनचर्या जेकर बा, न सूते के समय के कोई निर्धारण बा, न उठे के समय के निर्धारण बा, तो एकरा से कई तरह के बीमारी आदमी में घर कर रहल बा। बात बात के चिंता लेवे से उच्च रक्तचाप के बीमारी भी बहुत तेजी से बढ़ रहल बा, और एकरा में हमनी के जोन रहन सहन बा, जोन खान पान बा, जोन जीवन शैली में बदलाव बा, ओकरा कारण बहुत ही तेजी से बीमारी फैलता, ई जानलेवा भी बा। आज हमनी के उच्च रक्तचाप के कारण, लक्षण और निदान विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ मिश्र जी से भेंट वार्ता सुनल जाई। भेंट करता हो खब अमित कुमार जी। और आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनावल जाला। आज दिन विशेष के महत्व बा कि हमनी के जोन जोनी बीमारी तेजी से फैलता, बढ़ रहल बा, हाई ब्लड प्रेशर जो ना के कहल जाला, ओकरा के कैसे रोकल जाओ, कैसे ओकर निदान कइल जाओ, का कारण बा, एकरा बारे में समझल जाई, और एकरा से बचाव के तरीका भी कइल जाई। कैसे कि जोन आज के समय में एकल परिवार भल जाता, जो ना के कि परिवार के परिभाषा बदल गई, परिवार में कहीं 2 सदस्य, कहीं 3 सदस्य, 4 सदस्य रहता, वो भी इतना बट गई बड़ा कि पति पत्नी के अलावा भी बहुत तरह के समस्या हो रहा बा कि परिवार के

जोन एकाकी जोन बीतता है आदमी के जोन एकाकी समय बीतता है दिन भर मोबाइल और टीवी के बीच में बीतता वो खतरनाक होखल जाता। कोई बातचीत करे वाला नहीं है, कोई दुख बांटे वाला नहीं है, कोई दुख के आपस में शेयर करे वाला नहीं है। तो जोन एकाकी जीवन बा उकरा से भी ये बीमारी बढ़ रहल बा। तो आज के हमनी के कार्यक्रम में उच्च रक्तचाप कारण लक्षण और निदान विषय पर भी भेंटवार्ता सुनल जी। उच्च रक्तचाप से बचाव है जरूरी, यह पर एक जानकारी भी मैं भी संक्षिप्त चर्चा के लिए। मौसम के पूर्वानुमान पर भी चर्चा हुई। श्रोता भाई बहन, आज 17 मई के हर साल विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनावल जाला। ये एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वार्षिक आयोजन है और एकर उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी और सूचना समाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस के उद्देश्य समाज और अर्थव्यवस्था के बेहतर बनावे में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो ना के संक्षिप्त नाम ICT है के क्षमता के उजागर कैल और संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास बा ओकर लक्ष्य के बढ़ावा दिहल बा। श्रोता भाई बहन, 17 मई के महत्व 1865 से जुड़ल है जब अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के स्थापना भइल जोन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ बन गई और विश्व दूर संचार सूचना समाज दिवस भी पहला बार 1969 में मनावल गई और ओकरा बाद से हर साल दुनिया भर में मनावल जाला। ये दिन संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भइल प्रगति और ओकर विचार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सार्वभौमिक पहुँच के लाभ के बढ़ावा देवे खातिर और विश्व भर में विभिन्न क्षेत्र और समुदाय के बीच मौजूद डिजिटल विभाजन के दूर करे के अवसर प्रदान करेला। श्रोता भाई बहन, ये जोन दूर संचार और सूचना समाज से संबंधित जोन प्रौद्योगिकी बा, नवाचार बा, नीतिगत मामला बा, ओकर भी चर्चा करके प्रोत्साहित कई पर विशेष बल दिखल जा रहा बा। और आजकल तो देखी एकरा में एक नया चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन आ गिल बा, AI के जोन जमाना बा, ओकरा के बारे में भी आम जन तक जागरूक करना बा। श्रोता भाई बहन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी है जो उनकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। एकर स्थापना जोन भई रहे तो 17 मई 1865 के भई रहे और एकर नाम पहले रहे अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ, ओकरा बाद में ई पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन भइल। ओकरा बाद से 17 मई 1865 के जोन एकर स्थापना के दिन बा वही के लेके 1969 से 17 मई के दिन ई विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनावे के शुरुआत कैल गई। श्रोता भाई बहन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन जोन है तो वैश्विक सहयोग के बढ़ावा देवेला, विश्व भर में दूर संचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के नेटवर्क के विकास खातिर भी अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। श्रोता भाई बहन, जोन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ बा वो दूर संचार नेटवर्क के प्रणाली के वैश्विक अंतर संचालनीयता के अनुकूल और कुशल उपयोग सुनिश्चित करे पर भी बल देवेला। आज देखें कहीं भी जाते निर्वा देश विदेश से कहीं भी कोनो कोना में होखी सैटेलाइट के माध्यम से अपना के हैं सारा समाचार आ जाता, फोटो आ जाता, टीवी हमनी के देखते नहीं जा, पलक झपकत नहीं है, विदेश से पैसा ट्रांसफर होकर रवा खाता में आ जाता। ये सब जोन बेहतर दूर संचार व्यवस्था के ही परिणाम है और ये डिजिटल नेटवर्क मानक के भी नियंत्रित करेला। जोन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ बा तो डिजिटल नेटवर्क खातिर भी मानक स्थापित की ले बा जोना में कि व्यापक रूप से उपयोग करे वाला इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जोना के ISDN कहल जाला, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL प्रौद्योगिकी के भी शामिल कल गई बा। एकरा अलावा संचरण और ऑप्टिकल नेटवर्किंग मानक के भी वो निर्धारण करेला और ये मानक सिग्नल प्रारूप, संचरण दर, मॉड्यूलेशन तकनीक और त्रुटि सुधार में ये काम करेला। श्रोता भाई बहन, IP आधारित नेटवर्क और इंटरनेट के उदय के साथ ITU जोन बा वो IP एड्रेसिंग राउटिंग सेवा के गुणवत्ता और IP नेटवर्क के बीच अंतर

0: अंतर संबंध से संबंधित मानक विकसित भी कर रहल बा। आजरवा एजा जोन बैठल बानी आपन कंप्यूटर आपन लैपटॉप कहीं से भी जे सात समुन्दर पार बा ओकरो के दे के या ओकरा में काम करा सकतनी। ये सब जोन बातन सूचना तकनीक के जोन गुण बा जोन ओकर विशेषता बा वही कारण हो रहल बा। और सबसे ज्यादा चीज बा जोन ब्रॉडबैंड एक्सेस टेक्नोलॉजी जोन आयल जोन की ITU के विभिन्न ब्रॉडबैंड एक्सेस टेक्नोलॉजी खातिर ये मानक परिभाषित के लिए बा जोना में के डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL फाइबर ऑप्टिक एक्सेस केबल मॉडेम और वायरलेस ब्रॉडबैंड भी शामिल बा। श्रोता भाई बहन ई गवर्नेंस के बढ़ावे खातिर भी इलेक्ट्रॉनिक सरकार के संक्षिप्त जोन रूप बा ओकरा में दूर संचार के एक शक्तिशाली परिणाम लेके आयल बा जोन की इंटरनेट के माध्यम से कोनो क्षेत्र के या देश के नागरिक के सीधे सरकारी सेवा प्रदान करेला। ये पहला अवसर बा जोना में कि नागरिक के कई अवसर मने मिल रहल बा दूर ई गवर्नेंस के माध्यम से। आज जब कोनो चीज पर बा जानकारी लिहल चाहतनी कोनो शिकायत दर्ज करतनी तो वहीजा से वो विभाग रवा के तुरंत ईमेल पर भेज देता। ये ई गवर्नेंस के ही ये पहले काम बाटे और इतना जल्दी काम हो रहल बा कि जोना के आदमी कल्पना तक ना कर सके। उमंग के भी शुरुआत हुई बा। उमंग एगो एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सरकारी सेवा उपलब्ध करावे खातिर शुरुआत कैल गई। उमंग पर 1570 से अधिक सरकारी सेवा और 22,000 से अधिक बिल भुगतान सेवा भी उपलब्ध करावल गई बा ताकि लोगन के एक और उपयोग करे में आसानी हो सके। तो श्रोता भाई बहन आई चर्चा के बाद हमनी के सुनल जाओ लोकगीत। आज के कलाकार बने वंदना कुमारी और बोल बा रंग द पियावा।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी आपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।

0: श्रोता भाई बहन अभी हमने के सुनत रहनी है जा झूमर कलाकार रहनी है वंदना कुमारी बोल रहल रंगादा पियावा। श्रोता भाई बहन उच्च रक्तचाप आज बहुत तेजी से फैले वाला बीमारी बा। थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा लापरवाही, जीवन शैली जोन बात में बदलाव, खान पान में अनियमितता बदलाव, ये सब उच्च रक्तचाप के कारण हो सकेला और ये कारण बन भी रहल बा। उच्च रक्तचाप जानलेवा होला, हार्ट अटैक के खतरा एकरा में सबसे अधिक बनल रहेला, पक्षाघात के भी संभावना बनल रहेला, जो ना कि लकवा मारल कहल जाला। यही के कारण ब्रेन हेमरेज भी तक हो सकेला। श्रोता भाई बहन उच्च रक्तचाप के कारण का बा, लक्षण का बा, उगर निदान कैसे संभव बा, आई यह विषय पर हमने के भेंटवार्ता सुनल जाओ। आज के भेंटवार्ताकार बानी डॉक्टर सत्येंद्रनाथ मिश्र। डॉक्टर सत्येंद्रनाथ मिश्र वरिष्ठ चिकित्सक बानी और अवकाश प्राप्त मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भी रहल बानी। यहाँ से भेंट करतनी अमित कुमार जी, आई सुनल जाओ ये भेंटवार्ता, उच्च रक्तचाप कारण लक्षण एवं निदान।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे आकाशवाणी सासाराम के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एस एन मिश्रा जी और आज हमारी बातचीत का विषय है उच्च रक्तचाप कारण लक्षण एवं निदान। जैसा कि हम सब जानते हैं इन दिनों हमारे समाज में एक आम स्वास्थ्य समस्या है उच्च रक्तचाप, तो उसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आकाशवाणी सासाराम के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: उच्च रक्तचाप तो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, मेडिकल साइंस में उच्च रक्तचाप को लेके क्या धारणाएं हैं, क्या संकल्पना है?
2: जिसको हम लोग हिंदी में उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसको हम मेडिकल की भाषा में हाइपरटेंशन बोलते हैं।
1: जी,
2: हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है सोसाइटी में। पहले जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या चीज। इंट्रोडक्शन बता दूं कि ब्लड प्रेशर के मरीज कभी कभी इंडिया में देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए तो अबाउट 35% 25-35% है। ब्लड प्रेशर एक बीमारी कहें या कुछ हमारी अपनी फिजियोलॉजी में चेंजेज। ब्लड प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेरा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है, ब्लड को पुश करता है और पूरे शरीर में उसका सर्कुलेशन कराता है, फिर अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध खून जो है फिर से

0: से होते हुए हार्ट में लौटता है और वो फिर से शुद्ध होता है। ये साइकिल हमेशा 24 आवर्स चलता रहता है। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड को फोर्स करता है, जब ब्लड फोर्स करता है तो हमारे आर्टरी वाल्स पर वो हम लोग उसको मेजर करते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, एक सिस्टोलिक होता है एक डायस्टोलिक होता है। डॉक्टर लिखते हैं 120/80 चाहे 130/90 जो भी लिखते हैं, तो ऊपर वाला जो होता है दैट इज सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक उसको कहते हैं जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड को फोर्स जो करता है तो हमारे आर्टरी के वाल्स पर प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं वो दैट इज सिस्टोलिक। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय जो हम लोग आर्टरी के वाल्स पर जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो यूजुअली ये माना जाता है कि नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से कम और नीचे वाला 80 से कम होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के संदर्भ में कुछ बातें मैं बोल दूं आपको कि जब आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं ब्लड प्रेशर मेजर कराने के लिए तो एटलीस्ट या घर में भी मेजर करते हैं तो आप कम से कम 10 मिनट तक आप रेस्ट में रहें, मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट दोनों होना चाहिए। अगर आपने कॉफी पी लिया है या ड्रिंक कर लिया या स्मोक कर लिए हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यू हैव टू वेट फॉर 1/2 आवर टू 1 आवर, वो तब जाकर के स्टेबलाइज होता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसा है कि एक सिंगल जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है इट इज नॉट सफिशियंट टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड प्रेशर। एक रीडिंग से कभी नहीं आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। आपको उसके लिए फ्रीक्वेंट जो है इंटरवल पर आपको ब्लड प्रेशर लेना होता है। इसलिए पेशेंट को आपने नापा इमीडिएट और दवा दे दिया ये सही नहीं होता है। लेकिन कोई इमरजेंसीज हो, मेडिकल इमरजेंसीज हो, जैसे किसी के मेडिकल इमरजेंसी का मतलब किसी का 220/125 चला गया तो दैट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, उसमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज कि शाम के समय ब्लड प्रेशर जो होता है ये एट नाइट व्हेन यू आर इन रिलैक्स पोजिशन ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, लेकिन सुबह में ब्लड प्रेशर फिर पुनः बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो बताया हमने 120/80 से नीचे होना चाहिए, और इलिवेटेड कब कहेंगे जब 120/129 हो तब उसको हम लोग बढ़ा हुआ बोलेंगे। स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे जबकि 130/139 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन 142 से अबव होना चाहिए। उससे डायस्टोलिक भी उसी रेशियो में 80/89 स्टेज 1 और 90 से अबव हो तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। देन कम टू द इसका कारण क्या है
1: जी।
0: इनफैक्ट ऐसा है कि ब्लड प्रेशर जो होता है 95% केसेज में इसको कहते हैं आइडियोपैथिक इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि जिसका कुछ कारण पता ही नहीं है, वो मे बी जेनेटिक और सम अदर फैक्टर्स, और समटाइम्स जो हमारा लाइफ स्टाइल है दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली ओबेसिटी है, डायबिटीज है वगैरह वगैरह जो ऑलरेडी उसको और एग्रेवेट कर देता है। लेकिन ये सब चीजें फैक्टर्स जो होता है वो टेम्पररी फैक्टर होते हैं। जैसे ओबेसिटी हो गया, रात में जो खराटे लेते हैं इसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो सब चीजें हो गई, या एक्सेसिव अल्कोहल यूज हो गया, या फिर दर्द की दवाएं बहुत सारे लोग खाते हैं NSAID बोलते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा कॉफी और अल्कोहल लेने से बढ़ता है, सारी चीजों से बढ़ते हैं, स्मोकिंग से बढ़ता है, लेकिन ये टेम्पररी कॉज होते हैं। आप उसको छोड़ देते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करते हो तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसेंशियल हाइपरटेंशन में इन सारी चीजों को छोड़ने के बाद भी प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है, वो बढ़ा ही रहता है। इसीलिए सलाह देते हैं कि अगर ये सब चीजें आ जाते हैं तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए, दवा की मात्रा भी कम हो जाती है और कंट्रोल भी काफी रहता है। देन कम टू द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बहुत सारे कारणों से होते हैं, उसमें कारण जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारा किडनी है। किडनी के रोग में यूजुअली देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी फिर डैमेज होता है, ये विशेष साइकिल है। कुछ जन्मजात रोग होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह होते हैं, उसमें भी होता है। हमारे कुछ इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे जैसे बहुत सारे ग्रंथियां आती हैं, जैसे थायराइड हुआ, पिट्यूटरी हुआ, एड्रेनल हुआ, उसमें भी गड़बड़ी से ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थायराइड के डिजीज में बढ़ जाता है। कुशिंग सिंड्रोम, उसमें हमारे कोर्टिसोन की मात्रा, कोर्टिसोन जो होता है स्टेरॉइड विशेष तरह का होता है, उसकी मात्रा जब ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो उसके वजह से भी हो जाता है। हाइपर कैल्शियमिया वगैरह से भी हो जाता है, और ये न्यूरोजेनिक भी हो सकता है और ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, कुछ दवाइयों से हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि कभी भी पेशेंट को, हाइपरटेंशन के पेशेंट को ये खुद से पता नहीं होता है कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये तो इंसिडेंटल कभी उसका मेजरमेंट डॉक्टर ने किया चाहे कभी कराया, उसका पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है, या कोई इमरजेंसी आ गई। ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी ये होती है कि इनकेफेलोपैथी होता है, जिसमें सिर में दर्द, इंटेंस पेन होता है, आंख के सामने जो चमक दिखाई देने लगता है, या फिर उल्टी होने लगती है, बेहोशी जैसा होने लगती है। ऐसी परिस्थितियां जब पैदा होती है तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर देख करके बताएगा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इसको मैनेज होना चाहिए। यूजुअली ब्लड प्रेशर की बीमारी 25 से 50 के बीच ही होती है। प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको बोला हमने, 25 से 50 के बीच ही ज्यादातर होता है। अगर 50 के बाद किसी को ब्लड प्रेशर होता है या 25

0: की उम्र से पहले ब्लड प्रेशर होता है यूजुअली सेकेंडरी ही होता है, वो किडनी से संबंधित हो या इंडोक्राइन से संबंधित हो सकता है। जिसको 25 से 50 में ब्लड प्रेशर नहीं है तो अदर कारण भी ढूंढना चाहिए। और डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि 50 के बाद यूजुअली अगर डायबिटीज हो तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
1: सर आपने तो कारण बताया, लक्षण क्या होते हैं?
0: लक्षण इसके ये है कि ब्लड प्रेशर जब होता है ज्यादातर तो कभी आपने कैजुअली ब्लड प्रेशर नपवा लिया तो पता चलता है, इसे लक्षण बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। कुछ रेटिना में प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, या हार्ट का कभी ECG करें या इकोकार्डियोग्राम करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है कि जो है हार्ट का मास ऑफ द मसल का जो मास है जिसको कहते हैं LVH हाइपरट्रॉफी, वो काफी हार्ट का मसल मोटा हो गया है, उसमें ब्लड वॉल्यूम जो है कम अट रहा है, तो ECG और इको से ही पता चल जाता है कि भाई इसको ब्लड प्रेशर है, तभी क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और कभी कभी पेशाब की जांच में एल्बुमिन वगैरह भी कभी आता है, उससे ही पता चल जाता है।
1: और जो सबसे बड़ी बात कि इसका निदान क्या है?
0: इलाज तो डॉक्टर ही करते हैं, इसका मेडिसिन से इलाज डॉक्टर ही करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है हम लोग लाइफस्टाइल में परिवर्तन अगर करें तो उसमें सुधार हो सकता है। पहला चीज ओबेसिटी, वजन को मेंटेन रखें, एक हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स की मात्रा, क्योंकि पोटेशियम एक साल्ट है, हमारे ब्लड में इंट्रासेलुलर सोडियम पोटेशियम दोनों होते हैं, सोडियम साल्ट जो है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सबका तो नहीं, जो साल्ट सेंसिटिव होते हैं उन लोगों का बढ़ता है, पोटेशियम साल्ट उसको नॉर्मल रखता है, डाउन तो नहीं कर नॉर्मल रखता है। तो पोटेशियम साल्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं फ्रूट्स में, सभी फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स का सेवन रेगुलर होना चाहिए। एक्सरसाइज एरोबिक एनोरोबिक दोनों एक्सरसाइज एवरीडे करना चाहिए, हाफ एन आवर एक्सरसाइज होना चाहिए, वॉकिंग हो जैसे भी जिस तरह के फॉर्म एक्सरसाइज हो, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल, ये दो चीज बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, और प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, नाइट में स्ट्रेस कम हो, ये सब चीज का ध्यान रखेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका मैनेज रहेगा, मेडिसिन की जरूरत कम पड़ेगी। अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो मेडिसिन की जरूरत कम पड़ेगी, अगर ये सब नहीं ख्याल रखते हैं तो मल्टीपल मेडिसिन आपको लेने पड़ेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब आप आकाशवाणी सासाराम के स्टूडियो आए और उच्च रक्तचाप पे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोता भाई बहन, अभी हमने का सुनत रहनी है जा उच्च रक्तचाप कारण लक्षण एवं निदान विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार रहनी है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ मिश्र, भेंट करता रहनी है अमित कुमार जी, और यहाँ के बहुत अच्छा अच्छा बात बतौनी है कि काहे हमने के उच्च रक्तचाप जो हाइपर टेंशन बा काहे होला, उगर लक्षण का है, ओकरा के कैसे बचाव कल जा सकेला, कैसे निदान कल जा सकेला, दवाई कैसे कम कल जा सकेला एक खातिर, और कुल मिला जुला के एक ही बात वहाँ कहने कि अपन खान पान सही रहे, समय पर आदमी सोए, और वजन के कम रखे, अपन जो वजन बा शरीर के ओकरा के कम करे के प्रयास करे के चाहिए, जो ना से कि उच्च रक्तचाप से बचाव हो सकेला। श्रोता भाई बहन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी हर साल 17 मई के मनावल जाला, एकर मुख्य उद्देश्य है कि साइलेंट किलर है, सुतला भर में आदमी के हाई ब्लड प्रेशर होला, हाइपर टेंशन होला और उगर जान चल जाला, एकरा के कहल गई बा साइलेंट किलर। और हाई ब्लड प्रेशर जोन है के प्रति जागरूकता बढ़ावे खातिर आ लोगन के समय समय पर उगर जांच और बचाव प्रोत्साहित करे खातिर दुनिया भर में उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई के मनावल जाला। जोन 2026 के जोन थीम बा उच्च रक्तचाप के दिवस मनावे के, उकर बाटे कि उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, सब कोई मिलके हमनी के कौन कौन काम कर जाओ, जोना से कि हाई ब्लड प्रेशर जोन बा हाइपर टेंशन बा वो कम हो सके, एकराम बा कि सटीक स्क्रीनिंग कर जाओ, जीवन शैली में बदलाव कर जाओ, हृदय रोग और स्ट्रोक और गुर्दा के बीमारी जोन बा किडनी के बीमारी के वैश्विक बोझ के कम कर जाओ। श्रोता भाई बहन, अगर कोई के हाई ब्लड प्रेशर के समस्या बा तो ओकरा के नियमित जांच जरूर करावे के चाहिए, एकरा खातिर घर पर चाहे कोई क्लिनिक में चाहे सरकारी अस्पताल में जाके ओकर ब्लड प्रेशर नपवावे के चाहिए, संतुलित आहार लेवे के चाहिए, भोजन में हमनी के फल हरा सब्जी साबुत अनाज और खड़ा अनाज बा ओकरा के लेवे के चाहिए, कम नमक के प्रयोग करे के चाहिए, सोडियम के मात्रा कम करे के चाहिए, योग और व्यायाम प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा करे के चाहिए, और कम से कम 5 किलोमीटर तक टहले के व्यवस्था करे के चाहिए, 5 किलोमीटर पैदल टहलना भी बहुत आवश्यक।

हुआ। नशा पान से अपना के दूर रख के भी उच्च रक्तचाप के कम कर जा सकेला। श्रोता भाई बहन, अगर हमनी के प्रतिज्ञा लिहल जाओ, प्रण लिहल जाओ कि भाई हमनी के अपन ब्लड प्रेशर के कम कर जा सकेला, तो जरूर करे के चाहिए। और एकरा में सबसे बढ़िया चीज बा कि हमनी के चाहिए कि अपन खान पान के बढ़िया से रखल जाओ। खान पान हमनी के सादा होके, बहुत तेल मसाला वाला खान पान ना कर जाओ, तलल भुनल चीज कम कर जाओ और स्वस्थ भोजन लिहल जाओ, साबुत भोजन लिहल जाओ, खड़ा अनाज के प्रयोग अंकुरित के ज़्यादा प्रयोग कर जाओ, तो हमनी के जो उच्च रक्तचाप के कम कर जा सकेला। अब चलत चलत मौसम के मिजाज पर भी एक नज़र डाल जाओ। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहला। मौसम विभाग से कोई ऐसा खास चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के कहना बा कि 17 मई तक आज तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्का बारिश हो सकेला, अंधड़ आ सकेला, 50 से 60 किलोमीटर के रफ्तार से तेज हवा भी चल सकेला। तो अब कार्यक्रम के समय और आ रहल बा, कार्यक्रम संपन्न करे के अनुमति दी। चला चला सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम। श्रोता भाई बहन, ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहनी है संतोष कुमार जी।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। श्रोताओं, शाम के 6:30 हो चुके हैं। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब समय हो चला है कार्यक्रम सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत सुनने का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म बलम परदेशिया से। आवाज है आशा भोसले की और इसके गीतकार हैं अंजन और संगीतकार चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म भैया दूज से। इसके गीतकार हैं लक्ष्मण शाहबादी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त। आवाज है अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म धरती मैया से। इसके गीतकार हैं लक्ष्मण शाहबादी और संगीतकार चित्रगुप्त। आवाज है दोस्तों आशा भोसले की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव से। आवाज है चंद्रानी मुखर्जी की और इसके गीतकार हैं लक्ष्मण शाहबादी, संगीतकार चित्रगुप्त। फिल्म तो लीजिए सुनिए गंगा किनारे मोरे गांव का ये गीत।

लीजिए सुनिए फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत, आवाज है कल्पना और आलोक की, इसके गीतकार हैं एस कुमार और संगीतकार राजेश रजनीश।

ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म बिहारी बाबू से। इसके गीतकार हैं ब्रिज किशोर दुबे और संगीतकार चित्रगुप्त। आवाज है आशा भोसले की।

अब आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गीत। आवाजें हैं हेमलता और जसपाल की। इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म बिहारी बाबू से। इसके गीतकार हैं ब्रिज किशोर दुबे और संगीतकार चित्रगुप्त। आवाजें हैं सुरेश वाडिकर और अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 7:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज अहमद का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की स्थानीय गतिविधियों पर। कैमूर जिला जनसंपर्क कार्यालय। कैमूर जिले के 62 अनुसूचित जनजाति एवं बहुल गांवों में 18 से 25 मई तक चलेगा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले विशेष जागरूकता एवं जन कल्याण अभियान। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में देश भर में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कराना है। इस क्रम में कैमूर जिले के अनुसूचित जनजाति एवं पीवीटीजीएस बहुल 62 चयनित गांवों में दिनांक 18 मई 2026 से 25 मई 2026 तक व्यापक जन जागरूकता एवं जन अभियान आयोजित किया जाएगा।

कैमूर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा परिमार्जन के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करने हेतु दिए गए निर्देश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता भभुआ द्वारा आज यानी रविवार को विशेष शिविर आयोजित कर लंबित परिमार्जन आवेदनों का किया गया त्वरित निष्पादन। भूमि अभिलेखों से संबंधित परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु आज यानी रविवार को भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR भभुआ द्वारा DCLR कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर में भभुआ, भगवानपुर एवं रामपुर अंचल के सभी

संबंधित कर्मचारी केसी को प्रातः 8 बजे से उपस्थित होकर लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों एवं कर्मियों की सक्रियता भागीदारी से परिमार्जन पोर्टल पर लंबित मामलों का गहन परीक्षण कर उनका त्वरित निष्पादन किया गया।

रोहतास जिला जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन रोहतास प्रतिबद्ध, जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय आदि न्याय महाअभियान यानी PMJNMAN अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन रोहतास जिला में किया जा रहा है। यह अभियान जन भागीदारी, सबसे दूर सबसे पहले की भावना पर आधारित है। जिलाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों के जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में दिनांक 18 मई 2026 से 25 मई 2026 तक विशेष शिविरों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा लाभुकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा ताकि पात्र लाभुकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय टीमों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी आज की गतिविधियों पर नजर। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, समय अभाव की वजह से हम ये गाना आपको नहीं सुनवा सके, इसके लिए हमें खेद है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब आइए सुनते हैं गाना का शेष भाग।

इसी के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास यहीं संपन्न होता है। मुमताज अहमद को दीजिए इजाजत।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 7:25 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो,
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
3: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
7: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया, 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें।
0: केंद्रीय पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पशुओं के नस्ल सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुंगेर दौरे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बाद लखीसराय में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे पशुओं के विकास और दुग्ध उत्पादन में काफी लाभ होगा।
2: मदर डेयरी का भी काम बहुत तेजी से जमालपुर में शुरू होगा, डेयरी का। और इसके साथ साथ पशुओं के विकास के लिए और पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करने को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी एक पूर्णिया में बना है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट और एक लखीसराय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट लगाएगा, फॉर्म लगाएगा, ताकि अच्छे क्वालिटी का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हो सके।
0: श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के विभिन्न भागों का दौरा किया और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ की अपील का स्वागत किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर अपनाना चाहिए।
3: नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज समस्या आ गई हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है, खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपा गया है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
4: केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है। जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बकसने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है।

0: पथ निर्माण मंत्री शैलेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भागलपुर के बिहपुर में एक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की मांग रखी है। श्री शैलेन्द्र ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिक हितों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा भी की। केन्द्रीय मंत्री श्री मांडविया ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहार के संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज सारण जिले के मस्तीचक में 150 करोड़ रुपए की नेत्र चिकित्सा पहल की शुरुआत करते हुए ये घोषणा की है।
1: टारगेट है कि कम से कम 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगे।
0: अडानी समूह अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से सारण में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहा है। इसके तहत आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। समूह प्रमुख गौतम अडानी ने बिहार की भूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की भूमि बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है।
2: यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली।
0: प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामान, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतें और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के करीब रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर एसएसपी जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक याओ सू जंग के रूप में की गई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश के उद्देश्य, उसके संपर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभवाणी,
4: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। श्री शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को

0: संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय भाजपा की असली ताकत है। श्री जायसवाल आज किशनगंज में पार्टी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 के समापन सत्र में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
2: भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम और प्रशिक्षण चलता रहता है। हम चुनाव के दूसरे दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो है, कार्यकर्ताओं को और सरकार के साथ कैसे समन्वय और भी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है।
0: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 18 मई, राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संग्रहालय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संग्रहालय वर्तमान और अतीत तथा भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। ये हमें विरासत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इस अवसर पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार इकाई की ओर से पटना समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 80 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण और एआई आधारित अग्नि नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य अग्निशमन सेवा को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा। जहानाबाद जिले के अरवल मोड़ के समीप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के प्रति जागरूक किया गया। भारत स्काउट एंड गाइड की टीम ने जहानाबाद के उर्दू कन्या विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया, 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
4: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
8: यात्रियों
9: को आवेदन है। मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
9: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
5: अब क्या करोगे?
9: फ्री वाईफाई है ना?
8: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
11: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
12: बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिले में यह उनका पहला दौरा था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट से लेकर विष्णु पद मंदिर, महाबोधि मंदिर और शंकराचार्य मठ तक पूरे मार्ग पर राजनीतिक उत्साह, धार्मिक आस्था और शक्ति प्रदर्शन का माहौल दिखा। जगह जगह बैंड बाजा और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। श्री चौधरी सबसे पहले विष्णु पद मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित विष्णु पद कॉरिडोर और घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बाद में बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रस्तावित बोध गया कॉरिडोर की योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री शंकराचार्य मठ पहुँचे और वहाँ आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इधर प्रस्तावित विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर को लेकर पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर के विश्राम गृह में सैकड़ों की संख्या में पंडा समुदाय के लोग जुटे और विष्णु पद क्षेत्रीय जन जागरण मंच नामक संस्था का गठन कर कॉरिडोर निर्माण के विरोध में बैठक की। बैठक में विष्णु पद प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान नक्शा में गयापाल पंडों के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ऐसे में वर्तमान स्वरूप में कॉरिडोर निर्माण स्वीकार नहीं होगा। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के गया आगमन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए। इसके बाद वे वियतनामी मठ भी गए। दिन भर के कार्यक्रम के बाद वे देर

0: शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रूपए जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 महत्वपूर्ण अपील की है और संकट के इस घड़ी में सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं, उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदे जाकर, और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इधर जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के नादरागंज ब्राह्मणी घाट निवासी छात्र शुभम कुमार ने जेईई मेन परीक्षा में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 में 100% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि इससे पहले भी वह सेशन 1 में 100% अंक हासिल कर चुके हैं। लगातार 2 बार यह उपलब्धि हासिल कर शुभम ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इधर अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 जून से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। गया स्थित भारतीय सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के 11 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई से कुल 38,040 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। 7:50 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम ई मनपसंद का। ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज अहमद का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी ईमेल के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है akashwani.sasaram@gmail.com। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म शराबी से। इसके गीतकार हैं अनजान और संगीतकार बप्पी लहरी। आवाजें हैं दोस्तों किशोर कुमार और आशा भोसले की।

इस गीत के फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं बिटिया आमना नसरीन, आसमान

परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूलवाले लखमीनिया जिला बेगूसराय से आप हैं शमीम अहमद राय अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म दो चोर से। इसके संगीतकार हैं आडी वर्मन और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और आप हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। तो लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

इसी गाने की फरमाइश आप श्रोताओं ने भी की है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिशा शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से आप हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म कारवां से। इसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आरडी वर्मन। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अदालत का ये गीत। इसके गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन।

इसी गाने की आप सबों ने भी फरमाइश की थी। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से आप हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से आप हैं सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दोस्तों, इसे हमने लिया है फिल्म आशा से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की।

का दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद अवारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से आप हैं मुबीन अब्बासी,

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। आवाज है मोहम्मद रफी की और इसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं गढ़ नोखा, लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह, ग्राम खरवत गढ़ नोखा से आप हैं मोतीलाल जी, बिजेंद्र पासवान, लाल बिहारी सिंह। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

इसी गाने की फरमाइश आप सबों ने भी की है, ग्राम बिलाड़ी सासाराम से उपेंद्र पासवान, दिलीप कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार महतो, जगदीश महतो। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे दोस्ती का ये गीत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद। यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashwani.sasaram@gmail.com akashwani.sasaram@gmail.com। आप भेज सकते हैं अपनी फरमाइश और शामिल करवा सकते हैं अपना नाम। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म मेरे हुजूर से। आवाज है मोहम्मद रफी की और इसके गीतकार हैं हसन जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद एंड वीरेंद्र पांडे।

इसी गाने की फरमाइश आप सबों ने भी की है, करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बंडीडा, माफ कीजिएगा बंठीडा पंजाब से आप हैं, प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन, अभिजीत। आप श्रोता हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर कांति निकेतन से, रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, शारदा गुप्ता, रश्मि गुप्ता और नीलम गुप्ता और केपी शारदा।

अब आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का यह गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं पद्मा टाकिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

इसी गाने की फरमाइश आप सबों ने भी की है, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, यश, प्रयाण, शिवम वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

इसी गाने के लिए अभी अभी आप सबों ने भी फरमाइश की है, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से आप हैं, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

समय अभाव की वजह से ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके। श्रोताओं, कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। मुमताज अहमद को दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार।

0: संध्या, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

0: शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
2: टुडे वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्याधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्याधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
2: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में

कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत।

कार्यक्रम लोकधारा में ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महफिल के अंतर्गत कुछ गजल।

कार्यक्रम महफिल अब ही संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है। इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा।

भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

सर। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दर्द

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी

0: ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रस रंग के अंतर्गत कुछ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है अखिल सचदेवा की और एल्बम का नाम है यारो रब से दुआ करो।

ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं आवाजें हैं रूबीना और शबीना की। इसके गीतकार हैं असद अजमेरी और संगीतकार आजम अली मुकर्रम। एल्बम का नाम है ख्वाजा जी करम कर दो।

आबिर मुखर्जी की आवाज में आइए ये गीत सुनते हैं। एल्बम का नाम है प्यार की नई किताब, पर आइए इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा की आवाजों में आइए सुनते हैं ये गजल। एल्बम का नाम है हजारों ख्वाहिशें, द गजल ऑफ गालिब।

कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज है निकिता गांधी की। इसके गीतकार हैं कौशल किशोर और संगीतकार सौरभ राय। एल्बम का नाम है मैं तेरी हो गई।

कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम चित्र पर तराने सुनने का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए हम आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इसके गीतकार हैं समीर और इसे संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। आवाज है अलका याग्निक की।

कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म का नाम है रंग।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है निकाह, आवाज है सलमा आगा की और इसके गीतकार हैं हसन कमाल और संगीतकार आर डी वर्मन।

कार्यक्रम चित्रपट तराने अभी ही संपन्न होता है। कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज को दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 10:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक झलक। कल प्रातः 6 आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार, चिंतन, श्री राम चरित्र मानस इत्यादि, जिसे हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 7:30 पर कल प्रातः समय होगा कार्यक्रम नमस्ते रोहतास का, जिसमें आप सुनेंगे सुविचार, कल का इतिहास, स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, और उसके बाद कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां भी। कल 8 समय होगा समाचार प्रभात का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और 8:15 पर आप सुनेंगे कल

देशभक्ति संगीत। 8:20 पर सुबह समय होगा कार्यक्रम पसंद आपकी का। ये कार्यक्रम पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ हिंदी फिल्म संगीत। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे कल आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं संदेश। 9:06 पर समय होगा कल कार्यक्रम विवरण का।

कल प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मलिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जिसे हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। ये कार्यक्रम विविध भारती के कार्यक्रम होगा। कल 10 आप सुनेंगे समाचार, हिंदी समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और 10:05 पर समय होगा कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन का। संकलन एवं वाचन होगा अख्तर इमाम अंजुम का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। लोक माधुरी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 10:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत। रसधार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 10:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। और 11 हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।

कल शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत भक्ति संगीत और 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। 6:00 समय होगा शाम को गांव घर कार्यक्रम का और 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

0: कल के मौसम की बात अगर करें तो कल वर्षा नहीं के बराबर होगी और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% होगी। ये था कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: वाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला

0: der Leyen के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्म

मंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।